मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी पटना है। आज दिन है सोमवार, तिथि 28, वैशाख माह, शक संवत 1948, तदनुसार अंग्रेजी माह का 18 मई 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं जया। आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए आज का चिंतन।
1: मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है मानवता। मनुष्यता, मानवता, इंसानियत, ह्यूमिनिटी, पृथक पृथक शब्द होते हुए भी सबका अर्थ एक ही है, यानी मानव सेवा, मनुष्य की सेवा। यदि मनुष्य में ये गुण ना हो तो वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। सारे धर्म मानव सेवा का यही संदेश देते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, देश में ही क्या

0: विश्व भर में अनेक धर्म हैं, और ऐसे ही पृथक धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कबीरपंथी इत्यादि। सभी धर्म के पृथक पृथक मार्ग हैं, किंतु सब एक ईश्वरवाद का संदेश देते हैं। सब एक ही जगह आकर मिलते हैं। रास्ते अलग अलग, किंतु ठिकाना तो एक है। सभी मानवता सत्कर्म सद्गुण का संदेश देते हैं। यही ईश्वर का संदेश है। ईश्वर को हम देख नहीं सकते, किंतु कर्ता वही है। वही जन्मदाता, पालनकर्ता और संहार करता है। उसे हम महसूस करते हैं। हम सब में किसी न किसी रूप में वह विराजमान है। मानव सेवा से ही हम उसे पा सकते हैं। वही हमारी संतुष्टि है। यही ईश्वर का संदेश है। जन्म से ही मानवता का संदेश हम में प्रवेश करता है। जन्म से ही माँ जो हमें प्रदान करती है, वह मानव सेवा के अतिरिक्त और क्या है। वह हमें छोड़ नहीं देती, बल्कि बच्चे के लिए वह जो कर सकती है सब कुछ करती है। बच्चा वहीं से मानवता का संदेश पाता है, और फिर वह भी यही सीखता है कि उसे भी यही करना है। इसी तरह मानवता का संदेश तो बचपन से ही परिवार से ही शुरू होता है, और आगे परिवार जैसे जैसे बढ़ता है, यह संदेश जन्म और देश सेवा तक चला जाता है। इस प्रकार मानवता का यह संदेश जन्म से ही मिलने लगता है, किंतु आगे चलकर हम सब कितना इसे लागू करते हैं और सही दिशा में इसे लेकर चलते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। सभी धर्म ग्रंथ, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब आदि सभी का यही संदेश ईश्वरवाद है। यही ईश्वर की पूजा और सेवा है। ईश्वर सेवा से मतलब ईश्वर की पूजा या भगवान की पूजा का अर्थ भजन, कीर्तन या पूजा तक ही नहीं है, बल्कि हर जनमानस की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जिस किसी को जिस रूप में आवश्यकता हो, उसके दुख दर्द को बांटना, उसमें सहयोग करना, पीड़ित की सेवा, सब मानवता है। यही सत्कर्म और सेवा है। दुर्घटना के बाद पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाना, आवश्यकता अनुसार उसका उपचार करना या कराना, रक्त की आवश्यकता हो तो रक्तदान, आर्थिक कमी को पूरा करना आदि कई तरह से उसकी मदद की जा सकती है। किसी भूखे को अन्न दान, विद्यार्थी को विद्यालय या आर्थिक सहायता, भूकंप पीड़ितों की अनेक प्रकार से उन्हें मदद पहुंचाई जा सकती है। बाढ़ व सुखाड़ के समय लोगों को भरपूर मदद करना, इसकी कोई सीमा नहीं। भूकंप के बाद घर बार का बर्बाद हो जाना, उन्हें नए सिरे से बसाने की आवश्यकता होती है। रेल दुर्घटना आदि में सेवा करना, परिवार से बिछुड़ जाने पर उनके घर परिवार तक सूचना पहुंचाना, बिछुड़ों को मिलाना, ये सब अनेक प्रकार से मानव सेवा के उदाहरण हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आइए अब सुनिए कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत पशुओं में अफरा रोग, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे।
2: किसान भाइयों नमस्कार। पशुओं में अनेक तरह के रोग हो जाते हैं। उन रोगों से पशुओं को बचाना आवश्यक होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में अनेक रोग होते हैं। उन रोगों में अफरा रोग प्रमुख है। जुगाली करने वाले पशुओं में अधिक गीला हरा चारा खाने से उनके पेट में दूषित गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि एकत्रित होकर उसका पेट तान देती है, जिससे पशु बहुत बेचैन रहता है। रूमेन में हवा भरने से फेफड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ने के कारण पशु श्वास प्रश्वास क्रिया में कष्ट का अनुभव करता है। यदि इसका शीघ्र इलाज न किया जाए तो पशु मर भी सकता है। अफरा रोग का प्रमुख कारण दूषित आहार, अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का सेवन, खाने में एकाएक परिवर्तन, व्यायाम या कार्य के बाद एकदम ठंडा पानी पिलाना, गले में रुकावट, पेट की मांसपेशियों की खिंचाव शक्ति कम हो जाना तथा एक ही करवट अधिक समय तक लेटे रहना है। अफरा रोग का प्रमुख लक्षण रूमेन में गैसें भरकर उनका फूल जाना है। अक्सर इस रोग में बाईं ओर की कोख पशु की फूली हुई प्रतीत होती है।

0: इसे अंगुलियों से मारने पर ढोल जैसी डमडम की आवाज होती है। श्वास कष्ट होकर पशु बेचैन हो उठता है। वह खाना पीना तथा जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देता है। पशु की आंखें और सिराएं उभरी हुई प्रतीत होती है। उसका चेहरा दयनीय हो जाता है। उसके मुंह से लार गिरती है तथा जीभ बाहर निकल आती है। पशु बार बार उठता बैठता है तथा श्वास मुंह से चलने लगती है। अंत में रोगी पशु एक ही करवट लेट कर लंबी सांस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस रोग की चिकित्सा के लिए पशु की पेट की बाईं कोख पर दबाव डालकर खूब मालिश करनी चाहिए। आप पशु को कुछ दवाएं भी दे सकते हैं, जैसे टिंचर हींग 15 मिलीलीटर, स्प्रिट अमोनिया एरोमेटिक्स 15 मिलीलीटर, तारपीन का तेल 40 मिलीलीटर, अलसी का तेल 500 मिलीलीटर। इन सबको एक खुराक बनाकर प्रौढ़ पशु को पिलावें। इसे एक बार फिर से सुन लें। टिंचर हींग 15 मिलीग्राम, स्प्रिट अमोनिया एरोमेटिक्स 15 मिलीग्राम, तारपीन का तेल 40 मिलीलीटर, अलसी का तेल 500 मिलीलीटर। इन सबको मिलाकर एक खुराक बनाकर प्रौढ़ पशु को पिलावे। पशु के रूमेन से हवा निकालने के लिए या तो उसकी जीभ बार बार मुंह से बाहर खींचनी चाहिए या मुंह में लकड़ी का मुंह खोलनी डालनी चाहिए। ऐसा करने से पशु को श्वास लेने में कुछ आराम मिलता है। बीमारी अधिक होने पर उसके बाई कोख के बीचों बीच ट्रोकर और कैनुला से छिद्र करके उसमें की हवा निकालनी चाहिए। इसके अलावा पशु के खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे नियमित आप व्यायाम करावें, सड़े हुए चारे नहीं खिलावें। अक्सर ये देखा जाता है कि घर में कोई उत्सव होता है तो बचा हुआ खाना या नित्य प्रति जो घर में खाना बचता है उसे आप अपने पशुओं को खिला देते हैं, तो इससे उसके पेट में जो है गैस बनती है और गैस बनने के साथ ही अफरा का प्रकोप होने लगता है। तो पशुओं को आप शुद्ध पानी पिलाएं। गर्मी में जब आप उनसे काम ले रहे हों तो एकाएक ठंडी में लाने पर ठंडा पानी उसे नहीं पिलाएं। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि चारा उसे सही ढंग से खिलावें, पुराना या सड़ा हुआ चारा उसे नहीं खिलावें। घर में जो खाना वगैरह बचता है, जैसे अक्सर भात खिलाने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है और पशु को अफरा होने की आशंका होती है, तो इन सब बातों पर ध्यान दे करके आप अपने पशुओं को अफरा रोग से बचा सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आपने जानकारी प्राप्त की पशुओं में अफरा रोग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: स्वीडन ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री

कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक

0: के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद 3रे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी पटना है, आइए सुनिए वंदना। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है ये देशगान।

हरिओम शरण से सुनिए ये भजन।

0: इसके साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से, प्रस्तुत है रामचरितमानस।
1: एपिसोड 107 107।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं।

राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। इसके तहत आरटी दवाओं के नियमित सेवन से एड्स के साथ जीना आसान, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र।
1: श्रोताओं, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीनियर पैथोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे एआरटी दवाओं के नियमित सेवन से एड्स के साथ जीना आसान। डॉक्टर देवेंद्र, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये हम जानते हैं कि एड्स का इलाज या एड्स जो बीमारी है उसका इलाज एआरटी दवाओं से होता है
2: जी,
1: लेकिन ये किस तरह की दवाएं हैं, किस तरह से इनका सेवन किया जाना चाहिए और इनके सेवन के समय किस तरह की प्रिकॉशन मरीज को लेनी चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी आज हम आपसे चाहते हैं
2: जी।
1: कैसे शुरुआत होती है, कोई मरीज कहाँ से ले सकता है ये दवाइयाँ
2: जी? एआरटी का मतलब हो गया एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो ये जो हमारा ICTC सेंटर है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पर HIV के संक्रमण की जांच की जाती है और जैसे ये पता चला किसी व्यक्ति को कि HIV का संक्रमण है तो उसको ART सेंटर में, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर में भेजा जाता है

0: और वहाँ पर उसकी CD4 काउंट की जाती है। CD4 मतलब एक क्लस्टर डेजिग्नेशन मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसकी काउंट की जाती है। एक एक ये WBC वाइट ब्लड सेल का एक वेराइटी है। और अगर ये संख्या 500 तक आ जाती है, नॉर्मली ये 1100-1200 का लेवल होता है हमारे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, लेकिन अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति है और ये 500 तक घट करके ये CD4 काउंट आ गया है, तब ART सेंटर में ART दवाइयों शुरू की जाती है।
1: किस तरह से इनका सेवन किया जाना चाहिए?
0: जी, ART दवाई लेने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि इसमें दवाएं बिल्कुल नियमित ली जानी चाहिए और किसी तरह की दवाइयों में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि दवाइयां तो लेना ही लेना है, उसके अलावे खान पान भी मजबूत रखना है। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि ये इम्यूनिटी की बीमारी है, एड्स में हमारा जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो इसलिए इस तरह का डाइट हमारा होना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए, व्यायाम नियमित होते रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे।
1: डॉक्टर साहब, ART दवाओं के सेवन के साथ, चूंकि आपने कहा ये प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है
0: जी,
1: एड्स की बीमारी में, तो और क्या ख्याल रखना चाहिए मरीज को?
0: सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया कि नियमित दवाई का खाना चाहिए। और जो चार तरीकों से ये बीमारी फैलती है, हम बार बार कहना चाहेंगे कि संक्रमित गर्भवती माता से उसके बच्चे को, संक्रमित सुई एवं सिरिंज से ही बीमारी फैल सकती है, संक्रमित खून चढ़ाने से बीमारी फैल सकती है, और संक्रमित व्यक्ति के साथ में असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बीमारी होती है। तो ये चारों तरीकों से बचना आवश्यक है, और अगर हम लोग बचे रहेंगे तो ये बीमारी दूसरों को नहीं फैलेगी।
1: कि आपने कहा कि ये एक बार शुरू हो जाए दवाई, तो उसमें कभी भी उसकी
0: लाइफ लॉन्ग
1: दवाई
0: है
1: छोड़ना नहीं है,
0: जी
1: यानी एक दिन की दवाई भी मिस नहीं होनी चाहिए।
0: जी
1: शुरू करने से पहले क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए मरीज को?
0: जी उसको हम लोग कहते हैं प्री ART केयर। तो प्री ART केयर में ये ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलरली 6-6 महीने पर CD4 काउंट करा करके देखते रहना चाहिए। HIV पॉजिटिव और एड्स में अंतर है, ये बात समझने की आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन लग गया है तो वो HIV पॉजिटिव कहलाएगा, लेकिन वो एड्स का मरीज आज के डेट में नहीं कहलाएगा जब तक कि उसका CD4 काउंट 500 के नीचे नहीं आ जाता। तो हम लोगों को HIV पॉजिटिव है तो कोई ये एड्स की बीमारी उनको कोई जरूरी नहीं है, रेगुलरली 6-6 महीने पर CD4 काउंट कराते रहेंगे तो पता चलेगा कि एड्स की बीमारी है या नहीं।
1: मतलब HIV पॉजिटिव होने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि वो अस्वस्थ रहें,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन उस स्थिति में भी अपनी नियमित देखभाल, मतलब किसी तरह का उनको इन्फेक्शन नहीं हो, कोई संक्रमण नहीं हो, या उनसे ये बीमारी दूसरों को नहीं फैले, इस चीज का ख्याल मरीज को रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, ART सेंटर में उनको रेगुलरली आ करके अपना जांच पड़ताल कराते रहना चाहिए। और इसके अलावे जिला लेवल पर भी अभी ART सेंटर का ब्रांचेस खुल गए हैं, तो वहां पर भी जा करके भी इनकी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
1: जी श्रोताओं, किसी भी चीज की जानकारी उस चीज के प्रति या उस बीमारी के प्रति आपके डर को कम करती है। एड्स भी एक ऐसी बीमारी है, जितना आप कम जानेंगे इसके बारे में उतनी ही ज्यादा ये भयावह लगेगी।
0: श्रोताओं, जानकारी ही बचाओ।
1: डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत ART दवाओं के नियमित सेवन से एड्स के साथ जीना आसान, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले आइए आपको जानकारी दिए चलते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे हालचाल कार्यक्रम, प्रादेशिक लोकगीत का वक्त होगा सुबह 7:15 पर, शास्त्रीय संगीत 7:25 पर आप सुन सकते हैं।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का वक्त होगा सुबह 9:10 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे 10:00। एक बार पुनः फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुबह 11:00 से सुन सकते हैं।

बिहार का लोक संगीत यह कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे 12 बजकर 30 मिनट पर शुरू का सफर का वक्त होगा कानून की बातें यह कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर।

1:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:30 पर।

युववाणी यह कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 4:30 पर, 5:30 पर भोजपुरी कार्यक्रम आरती का प्रसारण किया जाएगा और भोजपुरी बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6:05 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का वक्त होगा संध्या 6:30 पर। 7:00 आप सुनेंगे खेती गृहस्थी सुगम संगीत 7:52 पर। रात्रि 8:00 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम 8:30 पर सुगम संगीत

और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। श्रोताओं, ये संक्षिप्त जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार।

वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्रीमोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमन्त्री श्रीमोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्रीमोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री

0: मोदी प्रकाशितवान।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवाया आमंत्रिता गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्राया चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भाग ग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरी इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

0: के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। श्रोताओं, वक्त हो गया है कार्यक्रम हालचाल का। हालचाल कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हो गए हैं। इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। श्रोताओं, इन दिनों समाज में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो विचलित करती हैं और हम सभी को चिंता में डाल देती हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो हम लोगों के सामने आते हैं वो सचमुच हैरान करने वाली हैं। कई बार तो विश्वास करने को दिल ही नहीं करता। एक तो सड़क दुर्घटनाएं जहां हमारे युवा रील्स या स्टंट करने में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मासूम और छोटी बच्चियों पर बढ़ता अत्याचार। इसके साथ ही सबसे हैरान करने वाला मंजर होता है वीडियो वायरल करना। कई बार तो लोगों की जान बचाने की बजाय लोग वीडियो बनाते रहते हैं। क्या वीडियो बनाना और वायरल करना इतना आवश्यक हो गया है? ये हम लोगों को क्या होता जा रहा है? हमारे समाज, हमारे देश पर किसकी नजर लग गई है? हम इतने असंवेदनशील क्यों हो गए हैं? इन सब पर हम सबको मिलकर चिंता करने की आवश्यकता है और खुद को बदलने की भी जरूरत है, तभी भारत की सच्ची तस्वीर सामने आ सकेगी। क्योंकि हमारा भारत बिल्कुल ऐसा नहीं है जो तस्वीर इन दिनों देखी जा रही है। श्रोताओं और

बिल्कुल श्रोताओं, कबीर जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोगों को अपने मन में झांकने की आवश्यकता है। बुराई हमारे अंदर जितनी है शायद सामने वाले में ना हो, तो सबसे पहले आत्म चिंतन की आवश्यकता होती है। हम लोग जैसा कि बातचीत कर रहे थे, हमारे भारत देश के युवाओं के लिए, युवाओं से हमारी अपील है कि वो अपना ख्याल रखें, अपने आसपास की गतिविधियों पर भी नजर रखें, गाड़ी को ओवर स्पीड ना चलाएं और सबसे अहम रील्स के लिए अपना और दूसरे की जान जोखिम में ना डालें। देश की तरक्की उनके सहयोग से ही संभव है। इसी कामना के साथ आज के लिए विदा दीजिए, फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए अब सुनिए प्रादेशिक लोक संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लोक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। कलाकार हैं बालेश्वर प्रसाद और साथी।

संपन्न होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन। कलाकार हैं आशीष कुमार चटर्जी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: and stories that continue to inspire. Akashvani at 90 years. One nation, one voice. Let's tune in again together to the past, the present, and the promise of a glorious tomorrow.
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मैन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने को।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में

0: संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में

0: निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे।

0: करेंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
2: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई

0: मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
3: Central to the visit was the adoption of a joint action plan which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions 21st century. Both nations launched a joint innovation partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for the industrial transition, significant

0: Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is a top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra rain train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran truce, writes the Hindustan Times. While the Times of India states drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptake, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission Initiative. Congress leader V.D. Satheesan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन कोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपनी दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदु किया है कि वो मेक इन इंडिया माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के 2 रोजा दौरे पर कल गोटनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें ये एजाज दो तरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क्यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज है जो किसी सरबराहे हुकूमत को दिया जाता है। ये वजीर आजम मोदी का 31वां बैनुल अक्वामी एजाज है। वफ़ की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया, जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ है। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती, एसएमईज, रसाई और अवाम से अवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे तआवुन के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इस दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान इख्तियार करना है, ताकि दो तरफा इक्तिसादी तबादलों को अगले 5 साल में दोगुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने 2027 में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी समिट मुनाकिद करने का आजम किया। स्वीडन के सीईओ के साथ बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मेक इन इंडिया और मेड

0: स्वीडन खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदऊ किया। अब इस शराकतदारी को सेमीकंडक्टर्स, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, जो आलमी इस्तेहकाम के तई एक मुश्तरका अज़्म का इयादा है। गोटेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदु किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। गोटेनबर्ग में स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तिरा और पायदारी की मुश्तरका अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तिरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा।
2: वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
1: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इकतसादी असलाहत के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल्ड में सनती मीटिंग के बाद नामा निगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीर आजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड फाइव और जनाब मोदी किंग हेराल्ड फाइव और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमा निगार से।
3: कांग्रेस की क्यादत वाली UDF वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनक्किद एक तकरीब में हलफ लेंगे। वजीर आला VD सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अराकीन पहली बार वजीर का ओहदा संभालेंगे। UDF कारकुन हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुँच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीरे आला, सुबुकदोश वजीर आला पिनराई विजयन और BJP के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूर दराज के इलाकों में रिहायश

0: लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखिला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संग में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज्राय आला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओनवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का यह पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़द होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि ये असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्जज अफराद और अवामी सेहत माहरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तई मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी, रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़दफरा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।

0: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबार ने वजीर आजम के नीदरलैंड दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है, अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबार की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमेरिका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
1: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन गोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 473.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5,00,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर रहा है। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी पटना समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से प्रसारित किए जाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत के अवसर पर वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये समाचार प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल AIR News_Patna पर भी उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषाओं में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहा है। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: सहयोग शिविरों में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहकर स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
2: राज्य में बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2026 प्रभावी हो गई है। इसके तहत बालू पत्थर के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: नियमावली के तहत पट्टाधारी द्वारा वाहन पर वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू या पत्थर लादने की स्थिति में अब पहली बार ऐसे प्रत्येक वाहन पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 महीने में जुर्माना का भुगतान नहीं करने या 1 से अधिक बार उल्लंघन होने पर खनन पट्टा को 3 माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन बरकरार रहने पर जिलाधिकारी को अस्थायी रूप से खनन पट्टा रद्द करने का अधिकार दिया गया है। नियमावली के प्रावधान के तहत लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे और ढके हुए वाहनों से ही करना होगा। बिना ढके लघु खनिज के परिवहन पर अब प्रति ट्रैक्टर 5,000, जबकि अन्य बड़े वाहन के लिए

0: 25,000 जुर्माना वसूला जाएगा। खनिज परिवहन के दौरान वाहन में लगे जीपीएस डिवाइस से छेड़छाड़ करने या उसे बंद करने पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम से 80 अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जलाशयों के आसपास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इको टूरिज्म की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पटना में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। श्री चौधरी ने पर्यटन के विकास के अन्य संभावित क्षेत्रों पर भी अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। पटना के लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गोवा, महाराष्ट्र और सिक्किम का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए तीनों राज्यों के निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को प्रत्येक राज्य के विशेषताओं को जानना जरूरी है, इससे हम अपने देश को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान शराब पीने के मामलों में 1,28,470 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें पटना जिले में सबसे अधिक 15,675 जबकि शिवहर में सबसे कम 1,078 लोग गिरफ्तार हुए। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि शराब बिक्री और सेवन के मामले में 9,41,857 छापेमारी हुई, वहीं 1,07,851 केस दर्ज हुए। बीते वर्ष 47,06,391 लीटर शराब जब्त हुई। श्री सहनी ने बताया कि अवैध शराब कारोबार से जुड़े 10,428 वाहन जब्त किए गए। प्रदेश में गुमशुदा या लापता बच्चों का पूरा विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के प्रावधानों को थाना स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इससे संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत अगर कोई बच्चा मिल जाता है तो इसकी जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज कराते हुए डाटाबेस को अपडेट रखना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की है।
3: दिनांक 18 मई राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का टेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.8, कैमूर का 42.6 और शेखपुरा का 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 41.7 तथा गया, पटना, जीरादेई और जहानाबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं तक की कक्षाओं को दिन के 11 बजे तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। जिले के सभी सरकारी, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी

0: केंद्र इसके दायरे में आएंगे। यह आदेश 21 मई तक लागू रहेगा। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि जल्द ही चौकबनी से देवघर के लिए नई रेल सेवा की शुरुआत होगी। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके साथ ही चौकबनी कटिहार मेमू सेवा की भी शुरुआत होगी। ई शिक्षा कोष ऐप पर अब शिक्षकों को स्कूल परिसर से 34 मीटर के दायरे में ही रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। पहले यह दायरा 500 मीटर निर्धारित था। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले मनिहारी साहेबगंज गंगा नदी सेतु निर्माण कार्य इस वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है।
1: मनिहारी साहबगंज जो पुल बन रहा है वो दोनों राज्यों के बीच की कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसका हम लोग रेगुलर रिव्यू भी करते रहते हैं। पीडी साहबगंज के द्वारा इसमें बताया भी गया है रिव्यू में कि इस साल के अंत तक दिसंबर 2026 तक ये पुल का उनका पूरा करने का प्लान है और उसी हिसाब से कार्य योजना बना करके वो लोग काम कर रहे हैं। इसकी हम लोग समीक्षा साप्ताहिक रूप से पीएमजी की बैठक में करते रहते हैं और उम्मीद है कि ये पुल दिसंबर तक बन जाएगा तो लोगों को कनेक्टिविटी में आसानी होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन शुल्क में कमी की है। सीबीएसई ने शुल्क को 700 रूपये से घटाकर 100 रूपये करने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन में यदि किसी छात्र के अंक बढ़ते हैं तो उसे शुल्क वापस कर दिया जाएगा। बकरीद का त्यौहार 28 मई को मनाया जाएगा। पटना स्थित इमारत शरिया और मरकजी मजलिस रुयते हिलाल खान का मुजीबिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बकरीद का चांद नजर नहीं आया। इसके चलते 19 मई को जिलहिज्जा की पहली तारीख होगी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी भभुआ सासाराम पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आज सुबह आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जनरल बोगी D3 में जलने की गंध महसूस हुई। इसके बाद बोगी के भीतर धुआं पड़ने लगा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव के पास बारह चट्टी विधायक ज्योति देवी के साथ असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार किया, साथ ही उनके सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई भी की गई। विधायक की शिकायत पर मोहनपुर थाने में 7 नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के चमनपुर गांव में कनकई नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं सहरसा जिले के नवट्टा में कोसी नदी में नहाने के दौरान 2 किशोरियों की डूबने से मौत की खबर है। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के मोहनी महुआगाछी में अपराधियों ने एक CSP संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 1,32,00,000 रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राजगीर में 1 माह तक चलने वाले मेले का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। मलमास मेले में श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुविधा मिलेगी। दैनिक जागरण लिखता है, अदानी समूह बिहार में अगले 2 से 3 साल में 50 से 60 हजार करोड़ का निवेश करेगा। प्रभात खबर ने लिखा है, बेगूसराय में देशव्यापी साइबर ठगी का खुलासा, 1 अकेले खाते के खिलाफ 205 शिकायतें। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, रेडीमेड गारमेंट ठप बना पूर्वी चंपारण, कपड़ों की 493 फैक्ट्रियों ने बदली चंपारण की तस्वीर। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, देश के 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में, पारा 40 डिग्री के पार। आज अखबार लिखता है, सूबे के सभी 534 मॉडल स्कूल 20 मई से चलेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम

0: लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in।
0: आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
3: जागो ग्राहक जागो।
2: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: फैशन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। आइए सुनिए उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शेर नगमा के तहत आप महजूद हो रहे थे गजल से। आवाज़ थी अशोक खोसला की और कलाम था कतील शिफाही का।

0: एक गजल चंद अशआर
1: जी जाए रात।
0: मतला है, किया है मौजों ने यूं किनारा,
2: किया है मौजों
0: किया
2: ने यूं
0: है
2: किनारा।
0: मौजों ने यूं किनारा, किनारे सहमे हुए पड़े हैं।
1: क्या बात,
0: किया
1: क्या
0: है मौजों ने यूं किनारा, किनारे
1: किनारे
0: सहमे
1: सहमे
0: हुए
1: हुए
0: हैं
1: पड़े।
0: पड़े हैं, न कोई हरकत न कोई हलचल, नज़ारे सहमे हुए पड़े हैं।
2: क्या बात है।
0: और ये शेर की उजाला मांगे का कोई लेके उछल रहा है बहरसू ऐसे, उजाला मांगे का कोई लेके
2: उछल
0: उछल
2: रहा
0: रहा है बहरसू ऐसे, हमारे शमसो कमर हैं हैरा, सितारे सहमे हुए पड़े हैं,
2: क्या बात।
0: सितारे सहमे हुए पड़े हैं। और जहाँ ने इमकान हसीन करके तेरी नज़र पे यकीन करके,
1: वाह
0: जहाँ
1: वाह,
0: ने इमकान
1: हसीन
0: हसीन
1: कर
0: करके तेरी
1: तेरी
0: नज़र
1: नजर,
0: पे यकीन करके,
1: वाह
0: है दिल के मारों का हाल ऐसा,
1: पड़े
0: बेचारे सहमे हुए पड़े
1: हैं।
0: हैं,
1: वाह वाह वाह वाह।
0: बेचारे सहमे हुए पड़े हैं। न जाने सहरा में ऐसा क्या था कि फूल चेहरा चमन से निकला,
1: क्या बात है, वाह वाह
0: न
1: वाह।
0: जाने
1: सहरा में
0: सहरा
1: ऐसा
0: में
1: क्या
0: ऐसा
1: था।
0: क्या था कि फूल चेहरा चमन से निकला, सिसक रही हैं सभी पतंगें, गुब्बारे सहमे हुए पड़े हैं,
2: वाह वाह वाह
0: गुब्बारे
2: वाह,
0: सहमे हुए
2: वाह
0: पड़े
2: वाह वाह
0: हैं।
2: वाह।
0: और ये शेर की अजब है जहनों की गुम रही भी, अजब है
1: सहनों की
0: जहनों
1: गुमराही।
0: की गुम रही भी, फजा में हर सू है तीरगी सी,
1: क्या बात,
0: फजा में हर सू है तीरगी
1: तीरगी
0: सी,
1: सी।
0: एक आम इंसान का जिक्र ही क्या,
1: हाँ,
0: इदारे सहमे
1: मैं
0: हुए
1: हुए पड़े
0: पड़े
1: हैं। वाह
0: हैं,
2: वाह
0: एक
2: वाह
0: आम
2: वाह
0: इंसान
2: वाह
0: का
2: वाह
0: जिक्र
1: वाह
0: ही
2: वाह
0: क्या,
1: वाह,
0: इदारे सहमे हुए पड़े हैं।
1: वाह वाह वाह।
0: और आखिरी शेर के, खिरद नमूदे सबब है हमदम,
1: हाँ,
0: जुनू पे तारी जमूद पे हम,
1: क्या बात,
0: खिरद नमूदे सबब है हमदम, जुनू पे तारी जमूद पे
1: पै
0: हम,
1: हम।
0: और
1: हाँ,
0: दिलों के शोले बुझे हुए हैं, शरारे सहमे हुए पड़े
1: वाह
0: हैं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: मक्ता देखेंगे कि
1: जी अनायत।
0: अता जो गांव के खेत में थे, अता
1: जो
0: जो
1: गांव के।
0: गांव के खेत में थे, अता चमकते जो रेत में थे, सुना है शहरे शरार में अब वो पारे सहमे हुए पड़े हैं,
1: वाह वाह,
0: सुना है शहरे शरार में अब वो पारे सहमे हुए पड़े हैं, किया है मौजों ने यूं किनारा, किनारे सहमे हुए पड़े हैं।
1: वाह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत बढ़िया।
1: ये थे जनाब अता हुसैन अंसारी साहब जी। अता आबदी आपके सामने अभी अपनी खूबसूरत गजल पेश कर रहे थे, और अब मैं मोहतरम प्रेम किरण से, मैं इन चार मिसरों के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी शर्त पे मंजूर उसकी कुर्बत थी, जो दोस्ती है अभी कल वही मोहब्बत थी।
2: क्या बात
1: वो
2: है,
1: बात सोच कर मैं जिसको मुद्दतों जीता, बिछड़ते वक्त बताने की क्या ज़रूरत थी।
2: क्या बात है,
1: जनाब मोहतरम प्रेम किरण साहब से गुजारिश है कि वो अपनी गज़ल से नवाजें।
2: गजल का मतलब
1: जी
2: देखिए
1: अनायत।
2: भैया, कि अभी तलक तो थी,
0: अभी तलक तो थी,
2: दोनों के दरमियां बातें,
1: क्या वाह वाह, अभी तलक तो थी दोनों के दर
2: अभी
1: में,
2: तलक तो थी,
1: दोनों के दर में अब।
2: दोनों के दरमियां बातें, जो हद से गुजरी तो पहुंची यहां वहां
1: वहां बात,
2: बातें।
1: वाह
2: क्या
1: वाह,
0: बात है, जो हद से पहुंची
2: अभी तलक तो थी दोनों के
1: दरमियां
2: दरमियां
1: बातें,
2: बातें, जो हद से गुजरी तो पहुंची यहां वहां
1: वहां बातें।
2: बातें। और शेर देखिए कि हम एक छत के तले अजनबी से रहते हैं,
1: हाँ,
2: क्या
1: हम
2: बात
1: एक
2: है,
1: छत
2: कि हम एक छत के तले अजनबी
0: के अजनबी से रहते
2: से
0: हैं,
2: रहते हैं, किसी से कोई भी करता है अब कहाँ
1: कहाँ
2: बातें,
1: बात है, वाह
2: क्या कि
1: वाह,
2: किसी से कोई भी
0: करता है
2: करता
0: कहाँ
2: है अब
0: बातें,
2: कहाँ बातें।
0: वाह बहुत खूब,
2: और ये शेर देखिए कि हम अपनी अपनी अना पर अड़े रहे तो फिर,
0: हम अपनी अपनी आना पर,
2: हम अपनी अपनी अना पर अड़े रहे तो फिर
0: वाह
2: सुलझ न पाएंगी दोनों के दरमियां
0: क्या
2: बातें,
0: वाह, क्या बात है,
2: कि सुलझ न पाएंगी
0: पाएंगी दोनों
2: दोनों
0: के,
2: के दरमियां बातें, और हमें ही ढूंढना है मसालों का हल कोई,
1: आह, हमें ही ढूंढना है
2: हमें ही ढूंढना है
1: मसालों
2: मसालों का हल
1: हल कोई,
2: कोई, चलो के तोड़ के करते हैं चुप्पियां बातें।
0: क्या बात है,
2: वाह
0: क्या
2: के
0: बात,
2: चलो के तोड़ के
1: करते
2: करते
1: हैं
2: हैं
1: चुप्पियां
2: चुप्पियां
0: बातें,
2: बातें।
1: वाह वाह वाह
2: और
1: वाह,
2: ये शेर बतौर खास के,
1: जनाही
2: तमाम रिश्ते लहू के बिखरते जाते हैं,
0: आहा, तमाम रिश्ते
2: तमाम
1: लहू
2: रिश्ते लहू
0: के
2: के
1: बिखरते,
2: बिखरते जाते हैं,
0: वाह
2: वहीं के हो गए सब बन गई जहां
0: क्या बात
2: बातें,
0: है, क्या
2: वाह
0: बात है,
2: कि
0: क्या
2: वहीं
0: बात,
2: के हो गए सब
0: बन गई
2: बन
0: जहां
2: गई
0: बातें,
2: जहां बातें। और ये
0: वाकई
2: शेर, शहर के बाद घरों में कोई नहीं मिलता।

0: शहर के बाहर सामान,
1: शहर के बाद
0: घरों में
1: घरों
0: कौन?
1: में कोई नहीं मिलता, दरों पे करती हैं दिन में
0: क्या
1: उदासियां
0: आप,
1: बातें,
0: वाह
1: के
0: वाह,
1: दरों पे करती हैं दिन
0: दिन में
1: में
0: उदासियां
1: उदासियां
0: बातें,
1: बातें। और
0: बहुत
1: ये
0: खूब।
1: आखिरी शेर के, नए जमाने के इंसान मशीन जैसे हैं,
0: क्या बात है,
1: के नए जमाने के इंसान
0: मशीन जैसे हैं,
1: मशीन जैसे हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे वक्त की कुछ और थी मियाँ
0: क्या
1: बातें,
0: वाह
1: के
0: वाह वाह,
1: हमारे वक्त की
0: कुछ और
1: कुछ
0: थी
1: और
0: मियाँ बात,
1: थी
0: मियाँ
1: मियाँ
0: मियाँ
1: बातें। और
0: बातें,
1: ये शेर एक और गजल का मतलब देखिए,
0: ना
1: के
0: जो जो
1: नफरत ही रह गई है
0: जी,
1: मोहब्बत चली गई,
0: क्या बात है, नफरत ही रह गई,
1: कि नफरत ही रह गई है
0: मोहब्बत चली गई,
1: मोहब्बत चली गई, घर से हमारे रूठ के बरकत चली गई।
0: आहा
1: क्या
0: हा हा,
1: बात,
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह।
0: वाह,
1: कि नफरत ही रह गई है
0: मोहब्बत चली,
1: मोहब्बत
0: मोहब्बत
1: चली गई,
0: वाकई
1: घर से हमारे रूठ के
0: बरकत
1: बरकत
0: चली
1: चली
0: गई है,
1: गई।
0: वाह
1: और ये शेर कि हम भी खुशी के नाज उठाते कहाँ तलक,
0: आहा,
1: हम
0: हम
1: भी
0: भी
1: कि
0: खुश
1: हम
0: होंगे,
1: भी खुशी के नाज
0: उठाते कहाँ,
1: उठाते कहाँ तलक, अच्छा हुआ कि घर से मुसीबत चली
0: वाह
1: गई,
0: वाह वाह वाह
1: कि
0: वाह,
1: अच्छा हुआ
0: कि घर
1: कि
0: से
1: घर से
0: मुसीबत चली
1: मुसीबत
0: गई,
1: चली गई।
0: वाह,
1: और ये शेर के, दो भाइयों के बीच की नफरत न पूछिए, कि दो भाइयों
0: के
1: के
0: बीच
1: बीच
0: की
1: की
0: नफरत मत
1: नफरत
0: पूछिए,
1: न पूछिए, घर से निकल के बात अदालत चली
0: क्या
1: गई।
0: वाह वाह
1: क्या
0: वाह
1: बात,
0: वाह,
1: कि दो भाइयों के बीच की नफरत न पूछिए,
0: पूछिए, घर से
1: घर
0: निकल के
1: से
0: बाद, बहुत
1: निकल के
0: खूबसूरत शेर
1: बात
0: है भाई, वाह वाह,
1: अदालत
0: पहुंच
1: अदालत
0: गई,
1: चली गई।
0: बहुत अच्छा,
1: और ये शेर की, अच्छा था हम गरीब थे
0: जी,
1: इंसानियत तो थी,
0: ओहो
1: क्या
0: वाह,
1: बात, कि अच्छा था हम गरीब थे
0: इंसानियत तो थी,
1: इंसानियत तो
0: वाह
1: थी,
0: वाह
1: गुर्बत से जान छूटी शराफत चली
0: क्या
1: गई,
0: बात है, वाह वाह वाह,
1: कि
0: खूब
1: गुर्बत से जान छूटी
0: शराफत चली गई,
1: शराफत चली
0: जी,
1: गई।
0: वाह,
1: और ये शेर के, दौलत का ये गुरूर भी कितना अजीब है,
0: आहा, दौलत का ये
1: कि
0: गुरूर
1: दौलत का ये गुरूर भी
0: कितना,
1: कितना अजीब है,
0: वाह
1: दस्तार बच गई तो रियासत चली,
0: वाह
1: क्या बात,
0: वाह वाह,
1: कि
0: दस्तार बच गई
1: दस्तार बच गई तो
0: तो रियासत
1: रियासत
0: चली
1: चली
0: गई है,
1: गई। और ये इसमें एक गजल का शेर हो गया है,
0: जी,
1: कि खंजर चला न खून का दरिया बहा कहीं,
0: खंजर
1: खंजर
0: चला
1: चला
0: नखून का
1: न
0: दरिया,
1: खून का दरिया बहा कोई, नजरों से कत्ल करके कयामत चली,
0: आ
1: क्या बात है, कि
0: वाह वाह,
1: नजरों से कत्ल
0: करके
1: करके
0: कयामत चली गई
1: कयामत
0: है,
1: चली गई। और ये आखिरी शेर की आवाज अपने दिल की मैं सुनता भी किस तरह,
0: आवाज अपने
1: कि
0: दिल की,
1: आवाज अपने दिल की मैं सुनता भी किस तरह,
0: वाह
1: दुनिया के शोरगुल में समा चली
0: क्या
1: गई,
0: बात है,
1: कि
0: वाह वाह,
1: दुनिया के शोरगुल में
0: समाज चली
1: समा
0: गई,
1: चली गई।
0: वाह क्या
1: और क्या बात,
0: गर्व है, जी
1: अब एक रोमानी गजल
0: जी अरशाद,
1: सुनिए,
0: बिल्कुल अरशाद,
1: कि यहीं पास कोई नदी गा रही है,
0: अच्छा,
1: यहीं पास
0: यहीं
1: कोई
0: पास
1: नदी
0: कोई
1: गा रही
0: नदी
1: है,
0: गा,
1: यहीं पास कोई नदी गा रही है मोहब्बत की ठंडी हवा आ रही है, क्या
0: वाह
1: बात है,
0: वाह, बहुत खूबसूरत, वाह,
1: यहीं पास कोई नदी गा रही है
0: मोहब्बत की ठंडी
1: मोहब्बत की
0: हवा,
1: ठंडी हवा
0: हवा
1: आ
0: चल
1: रही
0: रही है,
1: है,
0: अच्छा है भाई,
1: और गजब की कशिश है सदाओं में उसकी,
0: गजब की कशिश है
1: गजब की कशिश है सदाओं
0: सदाओं
1: में
0: में उसके,
1: उसकी, मुझे दूर मुझसे लिए जा रही है,
0: क्या
1: क्या
0: वाह
1: बात,
0: वाह वाह, मुझे दूर मुझसे लिए जा रही है,
1: गजब की कशिश है सदाओं में उसकी,
0: वाह उसके
1: मुझे दूर मुझसे
0: लिए
1: लिए
0: जा
1: जा
0: रही है,
1: रही है, और मैं देखूं कि उसको सुनूं शब ढले तक,
0: मैं देखूं कि
1: मैं
0: उसको,
1: देखूं कि उसको सुनूं शब ढले तक, सरापा गजल खुद गजल गा रही,
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है,
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: बात, कि
0: वाह,
1: मैं देखूं
0: के
1: कि
0: सुनूं,
1: उसको सुनूं शब ढले तक,
0: क्या बात है,
1: सरापा गजल खुद गजल
0: गजल
1: गा
0: गा रही
1: रही
0: है,
1: है,
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: सितारों की महफिल उसी से है रोशन,
0: सितारों की
1: सितारों की
0: महफिल
1: महफिल
0: उसी से है
1: उसी से है
0: रोशन,
1: रोशन, वही नूर पर नूर बरसा रही,
0: क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह,
0: वही
1: कि
0: नूर से नूर,
1: सितारों
0: वही नूर से
1: की
0: नूर,
1: महफिल उसी से है रोशन,
0: वही
1: वही
0: नूर
1: नूर पर नूर
0: नूर बरसा
1: बरसा
0: रही है,
1: रही है, और मैं खुद को संभालूं कि बेताब दिल को,
0: मैं खुद को
1: मैं
0: संभालू,
1: खुद को संभालूं कि बेताब दिल को,
0: जी,
1: किसी ने कहा जिंदगी जा रही है,
0: वाह
1: क्या बात
0: वाह
1: है, कि
0: वाह
1: मैं
0: वाह,
1: खुद को संभालूं
0: क्या
1: कि
0: बात है,
1: बेताब दिल को,
0: वाह,
1: किसी ने कहा जिंदगी
0: जिंदगी
1: जा
0: जा
1: रही
0: रही है,
1: है। और ये शेर आखिरी,
0: जी
1: कि
0: वाह,
1: मोहब्बत में कैसी सियासत हुई है,
0: वाह, मोहब्बत में कैसी
1: मोहब्बत के
0: सियासत हुई है,
1: मोहब्बत में कैसी सियासत हुई ये, कहीं की थी डोली कहीं जा रही है।
0: वाह वाह वाह,
1: कहीं की थी डोली
0: कहीं
1: जा
0: जा

0: रही है और यहीं पास कोई नदी गा रही है,
1: जी
0: मोहब्बत की ठंडी
1: हवा
0: हवा
1: आ
0: आ रही
1: रही
0: है।
1: है।
0: क्या
1: वाह वाह,
0: बात,
1: बहुत ही
0: बहुत
1: खूबसूरत
0: खूबसूरत।
1: शेर
0: जी
1: जनाब। प्रेम किरण, आपने बहुत ही अच्छी और खूबसूरत गज़ल पेश की।
0: वाकई
1: वो कहते हैं कि उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से,
0: क्या बात।
1: और वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया जिसे तराशा था हमने भी एक ज़माने से।
0: क्या बात,
1: अब मैं खालिक हुसैन परदेसी चंद एशार गज़ल के पेश कर रहा हूँ
0: नायक।
1: कि

रवा। और ये शेर देखेंगे कि न गाजा है न लाली है न बिंदिया है न काजल है न

0: अंधेरे। और ये मक्ता पेश है
1: अच्छा
0: कि हजारों गम है अपनी जिंदगी में फिर भी परदेसी,
1: वाह
0: हजारों गम है
1: अपनी
0: अपनी
1: जिंदगी में
0: जिंदगी में फिर भी

0: है।
1: वाह,
0: और एक दूसरी गजल का मतलब ही पेश
1: अच्छा
0: कर रहा हूं
1: अच्छा
0: मैं जी, देखेंगे कि
1: इनायत हो।
0: हो इजाजत तो कदम अपना बढ़ाऊं मैं भी।
1: वाह।

0: वाह,
1: तेरे जूड़े में कोई फूल लगाऊं मैं भी। शेर देखें कि मेरे घर भी तू अगर आने का वादा कर ले, तो

0: पे आकर खुद ही
1: मुंतजर हूँ मैं।
0: मुंतजिर हूँ तेरी दहलीज पे आकर खुद ही कि तू बुलाए तो तेरी बज्म में
1: क्या
0: आऊं
1: बात,
0: मैं
1: क्या बात।
0: भी। तू बुलाए तो, और इस गजल का आखिरी शेर मक्ता से पहले
1: जी
0: के वादे

0: हैं भी।
1: वाह
0: और हजरत, इसी गजल के साथ मैं अब इस महफिल सुखन का अख्तिताम करता हूँ। आज के इस महफिल सुखन में जो शोराए कराम हमारे दरमियान मौजूद थे, उनमें थे जनाब मोहम्मद अता हुसैन अंसारी उर्फ अता आबदी साहब, दूसरे शायर जनाब प्रेम किरण साहब जो पटना ही से तशरीफ़ लाया, और मैं खाकसार खालिक हुसैन परदेसी जो आज की निज़ामत कर रहे थे। और इसके साथ ही महफिल सुखन का यह स्टूडियो मुशायरा अख्तिताम पज़ीर हुआ।
2: सामिन, आप महजूज हो रहे थे महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा से। अब चलते हैं अगली पेशकश की जानिब, और अब बज़्म मौसीकी में पेशी खिदमत है ये उम्दा सी गज़ल, आवाज़ है हरी हरन की।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी के साथ हाजिर होते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसमंजरी में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं जया। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं।

बादल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, समीर के बोल, अनु मलिक का संगीत, अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसपिंदर नरुला और अनमोल मल्लिक की आवाजें थी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चाइना गेट से, अलका याग्निक और शंकर महादेवन की आवाज़।

0: आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम अभी जारी है, शेष गीत इस विराम के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दीदी नौकरी लग गई।
7: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
6: हाँ दी, नया मोबाइल।
7: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
6: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
7: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
6: प्रदीप
7: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
6: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
7: अच्छा
8: RBI कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। अब सुनिए फिल्म तनु वेट्स मनु का ये गीत ज्योति नोरा की आवाज में।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत और फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चंद गजलें लेकर हम हाजिर हुए हैं मुबारक बेगम की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में गजल आपने सुना मुबारक बेगम की आवाज़ में। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया। आइए कार्यक्रम का आगाज कर लेते हैं इस गीत के साथ।

खलनायक फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीरा से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़, इंदिवर के बोल, लक्ष्मी कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई है।

अब सुनिए यशोदास की आवाज़ में ये गीत फिल्म दादा से, कुलवंत जानी के बोल, उषा खन्ना का संगीत।

इस वक्त आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम अभी जारी है, शेष गीत इस अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत।

अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दुश्मन का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म फर्ज का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं अमित कुमार की आवाज़ में।

सावन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। गीतकार थे सावन कुमार और संगीतकार साजिद वाजिद। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अपना देश का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

चमेली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार संदेश शांडिल्य। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आंखें का, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

आखिर फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर। असुरी घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं बिहार का लोक संगीत, भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं रामेश्वर गोप।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

बिहार का लोक संगीत में भोजपुरी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे रामेश्वर गोप की आवाज़ में। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं छोटे लाल राय की आवाज़ में भोजपुरी लोकगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम सुरों के सफर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गायक और संगीतकार की जिसे सुनते हुए एक पीढ़ी बड़ी।
1: आलेख, स्वर और प्रस्तुति चंद्रमणि भारती।

छोटेलाल राय की आवाज़ में अभी आप भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों का सफर।

आज हम बात करेंगे वॉइस ऑफ मुकेश के नाम से मशहूर सिंगर बावला मेहता की, जिन्होंने मुकेश के जाने के बाद उस गजब के गायक की परछाइयों को जिंदा रखा।

गायक और संगीतकार बाबला मेहता का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत सीखने की परंपरा नहीं थी। उनके पिता इंद्रजीत मेहता बैंकर थे और मन्ना डे के गाने खूब पसंद करते थे। इसी जुनून को बाबला ने बहुत कम उम्र में अपना लिया था, लेकिन अपने फन से अनजान बाबला का संगीत बस गुनगुनाने तक सीमित था। तो फिर ये शर्मीला लड़का फिल्म जगत तक कैसे पहुंचा, बताएंगे आपको इस गाने के बाद।

बात उन दिनों की है जब बाबला कॉलेज में पढ़ रहे थे। अभी तक स्टेज पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। एक दिन कॉलेज फंक्शन के लिए एक लड़का अपने गाने का रियाज कर रहा था। उसके म्यूजिक नोट सही नहीं थे। जब बाबला ने उस धुन को सही कर सुनाया तब वो गायक भड़क गया और गुस्से में उसने युवा बाबला पर गायक ना होने का तंज कस दिया। बस उसी दिन से बाबला ने ठान लिया कि गायकी में नाम कमाना है।

कॉलेज के बाद बाबला भी बैंकर बन गए, लेकिन उनका मन संगीत की दुनिया में जाने का था। अपने इस शौक को जिंदा रखने के लिए उन्होंने मंच पर गाना शुरू किया। धीरे धीरे बाबला की लोकप्रियता बढ़ने लगी और बाबला मेहता स्टेज की दुनिया का एक बड़ा नाम हो गया। और ऐसे ही एक शो में कैसेट किंग गुलशन कुमार बाबला को सुनते हैं और फिर गुलशन कुमार उन्हें अपने एक एल्बम के लिए गाने का मौका देते हैं।

फिल्मी दुनिया में नाम कमाने का सपना लिए बाबला बैंक की नौकरी छोड़ देते हैं और पूरा समय गायकी को देते हैं। मुकेश की आवाज में बाबला की पहचान बन चुकी थी, लेकिन फिल्मों में गाने की हसरत अभी तक पूरी नहीं हुई थी। अंत में बाबला की मेहनत रंग लाई और संगीतकार शिव हरि ने फिल्म चांदनी में उन्हें गाने का मौका दिया। साल था 1989।

ये गाना सुपरहिट साबित हुआ और फिल्मी दुनिया में भी बाबला ने अपनी पहचान बना ली। साल 1990 की बात है, मुंबई के खार स्टेशन से आरडी बर्मन गुजर रहे थे, तभी एक कैसेट शॉप से गाने की आवाज आ रही थी।

लेकिन जब उनको पता चला कि आवाज मुकेश की नहीं बल्कि ये एक नए गायक बावला मेहता की है तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बावला से संपर्क किया और फिर बावला पंचमदा के लिए गाने लगे। फिर कुछ बांग्ला और उड़िया गाने भी गाए। फिल्म धरती की गोद में के सारे गाने बावला मेहता ने गाए थे, लेकिन अमजद खान की असमय मृत्यु के कारण ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। अपने फिल्मी कैरियर में बावला मेहता ने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। नदीम श्रवण, बप्पी लाहड़ी, राजेश रोशन, आदेश श्रीवास्तव, इन सब के साथ बावला की जोड़ी खूब पसंद की गई। यह महज संयोग ही था कि मुकेश के गाने गाकर मशहूर हुए सिंगर बावला मेहता की मृत्यु भी मुकेश के जन्म तिथि पर ही हुई।

आज बावला मेहता हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गाने हमारे और आने वाली कई पीढ़ियों के जेहन में समाये रहेंगे।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हमारे स्टूडियो घड़ी में दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानून की बातें। इसमें आज आप एक वार्ता सुन

0: जानेंगे बैंक ऋण संबंधी समस्या और समाधान के कानूनी उपाय। वार्ताकार हैं अविनाश चंद्र प्रसाद अधिवक्ता।
1: बैंक ऋण समस्या एवं समाधान। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति उसके बैंक पर निर्भर करती है। बैंक देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। आज बैंक द्वारा शिक्षा ऋण, घर बनाने के लिए ऋण, जमीन तथा मकान खरीदने के लिए ऋण, व्यापार के लिए ऋण, जिसमें

है आज बैंक द्वारा शिक्षा ऋण, घर बनाने के लिए ऋण, जमीन तथा मकान खरीदने के लिए ऋण, व्यापार के लिए ऋण, जिसमें छोटे तथा बड़े व्यापारी शामिल हैं, के लिए ऋण दिया जाता है। प्रत्येक बैंक एक पॉलिसी बनाती है तथा यह निर्धारित करती है किस संस्थान को तथा किस पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण दिया जाए। इसमें विद्यार्थी आवेदक तथा उसके माता या पिता सह आवेदक होते हैं। यह ऋण अस्थायी पते के आधार पर दिया जाता है। आवेदक विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता तथा कंबाइंड एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर लिया जाता है। इसका मूल कारण है विद्यार्थी जिसको बैंक लोन दे रही है उसका पढ़ाई समाप्त करने के बाद कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो तथा नौकरी मिल जाए ताकि आवेदक ऋण का भुगतान कर सके। शिक्षा ऋण पढ़ाई के अवधि तथा उस पर 1 साल का मोरिटोरियम दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आवेदक ऋण का भुगतान आसानी से कर सके। आवेदक के पास यह अधिकार होता है कि ब्याज का भुगतान ऋण लेने के बाद से ही शुरुआत करे या पूरी पढ़ाई समाप्त करने के बाद प्रिंसिपल तथा ब्याज मिलाकर भुगतान करे। मेरा सुझाव है कि शिक्षा ऋण में आवेदक को चाहिए कि ऋण लेने के साथ साथ ब्याज का भुगतान करते चले, इससे आवेदक को ऋण का बोझ हल्का रहेगा। 4 लाख तक के ऋण के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति को बंधक नहीं रखना पड़ता है। उसके ऊपर के ऋण के लिए संपत्ति का बंधक रखना जरूरी है। देश तथा विदेश सभी के लिए शिक्षा ऋण दिया जाता है, लेकिन इस ऋण में जरूरी कागजात बैंक में देना जरूरी है। इसके जानकारी के अभाव में व्यक्ति को बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर बैंक अधिकारी इस ऋण को देने में टाल मटोल करते हैं तो आप राज्य सरकार के पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए एक गृहवान सेल बनाई है जिस पर आपको आवेदन करना होता है तथा बैंक निश्चित समय पर इस ऋण को प्रदान करेगी। ऐसा नहीं करने पर सरकार बैंक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करती है। अब मैं घर, जमीन खरीदने तथा मकान बनाने के लिए ऋण की चर्चा करेंगे। इसमें आपकी जमीन से संबंधित सभी कागजात जैसे जमीन का दस्तावेज, लगान रसीद तथा दाखिल खारिज का पेपर बैंक में जमा करना होगा। इसके अलावा 3 साल का आयकर रिटर्न भी देना होगा। बैंक आवेदक का सिविल भी जांच करती है। यहाँ मैं बता दूं, सिविल उसको कहते हैं जिसके किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर क्या होता है, उसने जो पेमेंट कहीं बैंक से लिया है उसको कैसे वो लौटाती है, इसी को सिविल कहते हैं। तब उसके पॉइंट के आधार पर ऋण की राशि का तथा ब्याज दर निर्धारित करती है। अगर सिविल के स्कोर में कमी आती है तो बैंक ऋण देने से मना कर सकती है। सिविल यह बताता है कि आपने कितना ऋण लिया है तो उस ऋण को चुकाने में आप डिफॉल्ट हुए हैं। क्रेडिट कार्ड का स्कोर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। अगर आपने बैंक के ऋण का भुगतान किसी समझौते के तहत किया है या कोर्ट केस के आधार पर किया है, ऐसे आवेदक को बैंक ऋण देने से मना कर सकती है। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति आय से कम का रिटर्न भरते हैं जिसके कारण उन्हें अनुकूल ऋण राशि नहीं मिल पाती है। कागजात पर निर्भर करता है कि ऋण की राशि क्या होगी, इसलिए यह सलाह दी जाती है आपके अपने आय का पूरा पूरा विवरण सही सही आयकर रिटर्न में भरें तथा किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का भुगतान पूरा करें, जिससे आपका सिविल ठीक रहेगा और ऋण लेने में आसानी होगी। बैंक को भारत सरकार सरफेसी एक्ट के तहत अधिकार दिया है कि कानून के अंतर्गत सभी नियमों का पालन करते हुए आपके बकाया ऋण को पाने के लिए पब्लिक ऑक्शन के तहत आपकी संपत्ति को बेच कर अपना बकाया खत्म कर सकती है। आप अगर बैंक से उक्त एक्शन से नाराज हैं तो DRT, जिसे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं, जो केंद्र सरकार का एक ट्रिब्यूनल है जिसका कार्य क्षेत्र पूरा बिहार है, इसका गठन पटना में हुआ है, में सरफेसी अपील अंडर सेक्शन 17(1) के अंतर्गत कर सकते हैं। बैंक उधारकर्ता के 90 दिनों तक भुगतान नहीं आने पर उक्त खाता को NPA घोषित करती है और डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 13(2) के अंतर्गत भेजती है। निर्धारित समय तक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि NPA राशि तथा उस पर कंट्रैक्चुअल ब्याज दर तथा एक्सपेंसेस का भुगतान करे। ऐसा नहीं करने पर बैंक अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ सरफेसी एक्ट के अंतर्गत बंधक की गई संपत्ति का पोजिशन लेता है। उसी वक्त पीड़ित व्यक्ति DRT पटना में बैंक के विरुद्ध अपील कर सकते हैं, जो पटना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके लिए मैंने कहा बैंक ने कानून का पूरी तरह से पालन किया है या नहीं किया है। नियम के अंतर्गत बैंक को पोजीशन नोटिस को 2 लीडिंग
अखबार में प्रकाशन एक सप्ताह के अंदर करवाना होता है, तो एनपीए को लेकर आप मुकदमा डीआरटी में कर सकते हैं। एक अहम बात बतानी है कि रहने योग्य घर को बैंक नहीं बेच सकती है। अगर आप बैंक का बकाया देने को तैयार हैं, एनपीए डिक्लेयर करने के बाद बकाये पर बैंक ब्याज नहीं लगा सकती है। यह सेटलमेंट के समय ब्याज तथा अन्य खर्चों को जोड़ा जाता है। अगर बैंक ने आपके मकान को बेच दिया

तो आप सरफेसी अपील करके उसमें ऑक्शन परिचेता बैंक को पक्षकार बना के बैंक का बकाया चुकाकर अपना घर वापस ले सकते हैं तथा ऑक्शन परचेजर को भी कोर्ट के आदेश पर मुआवजा देना होगा। बैंक आपकी बंधक संपत्ति को दो तरह से कब्जा लेती है। पहला नॉशनल कहलाता है, इसमें बैंक के अधिकृत पदाधिकारी जो मुख्य प्रबंधक रैंक के होते हैं बंधक मकान पर पोजिशन नोटिस चिपका देते हैं तथा एक कॉपी उधारकर्ता को देते हैं। और दूसरा तरीका है बंधक संपत्ति का फिजिकल पोजिशन लेना, जिसमें बैंक एक आवेदन जिलाधिकारी को देता है और उनसे बंधक संपत्ति का फिजिकल पोजीशन लेने का आग्रह करता है। जिलाधिकारी सब बिंदुओं पर जांच करके एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है, जो पुलिस बल के साथ संपत्ति को कब्जा लेकर ताला लगा देती है तथा इसकी चाबी बैंक पदाधिकारी को देती है। इसके बाद भी अगर उधारकर्ता बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो पब्लिक ऑक्शन के द्वारा बंधक संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया की जाती है। इसके अंतर्गत संपत्ति का वैल्यूएशन कराना होता है तथा सेल नोटिस उधारकर्ता को भेजी जाती है। इसमें डेट ऑफ ऑक्शन लिखा रहता है। उधारकर्ता को सलाह दी जाती है कि बैंक के बकाया राशि का भुगतान ऑक्शन के पहले कर दे। इसका प्रकाशन दो लीडिंग न्यूज़पेपरों में करवाना आवश्यक है। इस तरह से बैंक संपत्ति को बेचकर अपना बकाया वसूल करती है और बची हुई राशि को उधारकर्ता को वापस कर देती है। ऐसी स्थिति आने पर उधारकर्ता DRT में सरफेसी अपील बैंक के विरुद्ध दायर कर सकते हैं। संपत्ति का वैल्यूएशन में डेट ऑफ NPA, प्रकाशन की तिथि या डिमांड नोटिस या पोजिशन नोटिस के नहीं मिलने के बिंदु पर बैंक को चैलेंज कर सकती है कि उसने एक्ट के तहत सभी नियमों का पालन नहीं किया है। इसलिए यह जो उसने एक्शन बैंक ने ऋणी के विरुद्ध किया है वो गलत है और उसको क्वैश किया जाए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक रूलिंग दिया है कि बैंक उधारकर्ता को सेल नोटिस देने से पहले एक रिडम्पशन का नोटिस देना होगा तथा इसके लिए 15 दिनों का समय देना होगा। अगर उधारकर्ता चाहे तो बैंक का बकाया देके अपनी संपत्ति को बैंक से वापस ले सकता है। रिडम्पशन का यह अर्थ यह होता है कि वो रिडीम कर सकता है 15 दिनों के अंदर, चाहे तो अभी भी उसको अंतिम मौका मिलती है कि वो अपना पेमेंट करके बैंक से अपनी बंधक की गई संपत्ति को वापस ले सकती है। अतः किसी भी संपत्ति को बेचने के पहले रिडम्पशन लेटर उधारकर्ता भेजना अनिवार्य होगा। सेल नोटिस को जिस शहर में बंधक संपत्ति वहां के दो समाचारों में छपवाना होता है, इसके लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है। बैंक से ऋण लेते वक्त सारे कागजात को ठीक से पढ़कर हस्ताक्षर करें। जहां पर इंश्योरेंस की जरूरत न हो उसे सोच समझ कर लें। किसी ऋण में जैसे गृह ऋण के इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है। इंश्योरेंस व्यक्ति या मकान दोनों का होता है। अगर व्यक्ति का प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है तो उसे आगे की EMI नहीं देनी होगी। बैंक शेष राशि इंश्योरेंस कंपनी से लेती है। अगर मकान की क्षति होती है तो इंश्योरेंस कंपनी का कंपनसेशन देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उपभोक्ता संरक्षण में मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें बैंक तथा इंश्योरेंस कंपनी दोनों को पक्षकार बनाना होगा। अगर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करनी है तो बैंक को मजबूत करना होगा। बैंक को ऋण लेकर अपने उद्योग को बढ़ावा देना होगा, ऋण का दुरुपयोग नहीं करना होगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बैंक ऋण लेकर उसका दुरुपयोग करती है, जिसे हम फंड का डायवर्जन कहते हैं। ऋण वापस नहीं होने तो ऑक्शन अकाउंट को NPA होने का खतरा बना रहता है। भारत सरकार ने DRT का गठन 1997 में किया कि बैंक से संबंधित ऋण के मुकदमे का निष्पादन जल्द हो सके तथा बैंक को अपना भुगतान मिल सके। DRT के गठन से पहले यह मुकदमा जिला न्यायालय में दायर किया जाता था, लेकिन न्यायालय में बैंक के मुकदमा में होने वाली देरी की वजह सरकार को यह कदम उठानी पड़े। DRT में बैंक का यह मुकदमा दायर होता है, इसका न्यूनतम बकाया 20 लाख रुपया होता है। यह कार्य प्रणाली ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोनों है। यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो किसी जिला न्यायालय के अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ प्रिजाइड करते हैं और दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपने निर्णय देती है। अगर बैंक के पक्ष में इसने निर्णय दिया तो एक सर्टिफिकेट जारी होता है और ये सर्टिफिकेट में जो भी अमाउंट बैंक के पक्ष में होता है उसको एक्सक्यूट कराने का काम रिकवरी अफसर का होता है, जो DRT में ही एक पदाधिकारी होते हैं। ये विभिन्न नियमों का पालन करते हुए नोटिस देते हैं, फिर पोजीशन लेते हैं और अंत में उसको सेल करते हैं। और बीडर जो होता है वो ऑनलाइन बिडिंग करता है और ऑक्शन भी ऑनलाइन ही होता है। ऑक्शन सफल होने पर ऑक्शन परचेजर को सफल घोषित किया जाता है, 15 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करना होता है। इसके बाद बैंक ऑक्शन परचेजर को संपत्ति का कब्जा दिलाती है। इन सारी प्रक्रिया में उधारकर्ता अपना ऑब्जेक्शन किसी भी बिंदु पर कर सकती है। इसमें आवेदन तथा साथ में कागजात लगाना होगा। बैंक जब भी गृह ऋण मकान बनाने के लिए देती है तो आप जितना भी मकान का कंस्ट्रक्शन करते उसी अनुकूल आपके ऋण की राशि दी है, ताकि आप ऋण का दुरुपयोग नहीं करें। बैंक ऊपर RBI
आरबीआई का भी कंट्रोल होता है। आप बैंक की गलत कार्रवाई पर कंप्लेन कर सकते हैं। सभी बैंक में गिरवान सेल होता है। आज देश का विकास बैंक ऋण के कारण हो रहा है।

0: बैंक में ऐसा विभाग होता है जिसका काम होता है बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़ी बड़ी राशि लगभग 100 करोड़ से अधिक की राशि ऋण प्रदान करती है। इससे उद्योगपति अपने प्लांट को लगाते हैं तो रॉ मटेरियल को खरीद करके अपने उत्पाद को बाजार में बेचते हैं। इससे देश में रोजगार का सृजन होता है तो देश के आर्थिक विकास में सहयोग होता है। बैंक बहुत सारे ऋण के अंतर्गत ऋण देते, इसमें अगर संपत्ति को बंधक के रूप में नहीं रखती है तो ऋण NPA जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, तो बैंक चाहे तो जिला न्यायालय में धनबाद याचिका उधारकर्ता के विरुद्ध दायर कर सकती है या सर्टिफिकेट केस भी दायर कर सकती है जो नाम पत्र पदाधिकारी के यहाँ दाखिल किया जाता है। यह मुकदमा फौजदारी होती है, इसमें उधारकर्ता को बैंक का बकाया नहीं जमा करने पर जेल भी हो सकती है। अतः किसी भी स्वस्थ नागरिक को यह चाहिए कि बैंक से ऋण लेके अपने उद्योग को आगे विकसित करे, शिक्षा ऋण पाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, गृह ऋण लेके अपना मकान या जमीन को खरीदे और बैंक का बकाया समय भुगतान करे। ऐसा करने पर दूसरे व्यक्ति को भी आसानी से ऋण प्राप्त हो सकता है। यहाँ मैं एक बात पर आपको समझाना चाहूंगा। आजकल आप देखते हैं कि आपके मोबाइल पर बहुत तरह से अनऑथराइज लोगों का फोन आते रहता है। वह यह कहता है कि आप हमसे ऋण लेंगे तो हम आपको आसानी से बिना पेपर का दे देंगे। ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोग अनऑथराइज हैं, गवर्नमेंट ने इनको किसी तरह का लाइसेंस नहीं दिया है। ज्यादातर ये इस तरह के ऋण देने की बातें गाँव में ज्यादा होती है, तो इस तरह से बचना चाहिए। और निष्कर्ष के तौर पर कहेंगे, बैंक के सहारे देश का विकास होता है और सही ऋण ले तो उसका दुरुपयोग न करके देश का विकास करे।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दीदी नौकरी लग गई।
7: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
6: हाँ दी, नया मोबाइल।
7: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
6: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
7: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
6: प्रदीप
7: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
6: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
7: अच्छा,
8: RBI कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: कानून की बातें, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें आपने सुना वार्ता बैंक ऋण संबंधी समस्या और समाधान के कानूनी उपाय। वार्ताकार थे अविनाश चंद्र प्रसाद, अधिवक्ता। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे देशकान, लेकिन एक अंतराल के बाद।
11: और इस गीत के बाद

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
3: इधर आइए, इधर
2: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222504। हमारा

0: ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
1: छाया की।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू की आवाज में, फिल्म का नाम है इम्तिहान, गीतकार हैं फैयाज अनवर और संगीतकार अनु मलिक।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और बेला की आवाज़ में इम्तिहान फिल्म का गीत। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म कयामत से कयामत तक का, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार होंगे आनंद मिलिंद और संगीतकार मजरू सुल्तानपुरी, लेकिन एक अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत। गीतकार हैं अनंत बख्शी और संगीतकार जतिन ललित।

क्या कहना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राजेश रोशन।

पंकज उधास की आवाज़ में अभी आप सुन रहे हैं बाजीगर फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं रानी मलिक ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक संरचना का विकास हो रहा है और अब लोगों को रोजगार के लिए

0: हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिठला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और

0: जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के

0: रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा

0: प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like.
2: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes.
7: Story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love you.
2: As I lie on my back,
3: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
3: looking up at the sky,
2: I see a big white bear.
3: I see a big white bear
2: looking down at me.
3: Looking down at me.
2: As I lie on my back,
3: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
3: looking up at the sky,
2: I see a ship sailing.
3: I see a ship sailing.
2: On a white sea.
3: On a white sea.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
3: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.
3: Waving its trunk at me.
2: As I lie on my back,
3: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
3: looking up at the sky.
2: Oh, it's fun. It's fun to me.
3: Oh, it's fun. It's fun to me.
2: To see whatever I want to see.
3: To see whatever I want to see.
2: So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
3: Yes, sir.
7: They are beautiful.
5: They are very big.
6: They change the shapes.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
3: Yes, sir.
2: So kids, here comes the song, As I Lie. What?
3: As I Lie.

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Buti Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोतीनुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
11: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
11: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.

8 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और

0: अनुभव किया था?
1: हाँ हाँ मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
1: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
0: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
1: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
0: बिल्कुल होता है।
1: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
0: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
1: है ना
0: जी।
1: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
0: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
1: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे

0: और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
1: अच्छा,
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि। आलेख अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800 44 0559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात

621 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में दिन के 3 बजने वाले हैं। इसी के साथ समाप्त होती है हमारी आज की प्रथम सभा। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:28 से।

0: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार मंजरी का भी।
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखिया हमें सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
0: मुद्दत हो गई,
1: जमाने आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देखकर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
0: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी।
0: तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
1: भाई, खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
0: क्या बात है?
1: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
0: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
1: पहले ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी, आपने बोला था। मुझे याद है। तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजुल जी कोई चीज मुझे एक दे देंगे तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी, पिलाने खिलाने की। तो चलिए, ये तो हो गई बात है हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
0: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है। क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ, मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं।
1: हाँ जी।
0: और तो, आज एक खास दिन भी है
1: जी।
0: खास एक क्यों, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
0: बड़ी मजेदार कहानी है।
1: पिछली बार भी हम

0: कोशिश करना छोड़ दिया हो। कहते हैं ना दोस्तों, जो लोग गिरकर संभलना सीख जाते हैं वही इतिहास रचते हैं। मुर्शिद,
1: बिल्कुल श्रोताओं, आपने नदी को तो देखा ही होगा, वह रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं बल्कि अपना रास्ता खुद बना लेती है। ठीक वैसे ही हमें भी जीवन में आने वाली परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने आती है
0: जी।
1: दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। लगातार मेहनत और धैर्य हर मुश्किल को बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने मुर्शिद। तो चलिए अब सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म माँ, बोल थे हमनवा, श्रेया घोषाल की आवाज़ में। मुर्शिद, आज कौन सा दिवस है?
1: आज है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, यानी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस।
0: अच्छा, हर वर्ष 18 मई को यह दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है ताकि HIV एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और वैक्सीन अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान दिया जा सके।
1: जी बिल्कुल श्रोताओं, HIV और एड्स के बारे में बहुत सी बातें हम सुनते हैं, लेकिन आज भी समाज में कई तरह की गलतफहमियां मौजूद हैं। इसलिए आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल मुर्शिद, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि HIV क्या है। HIV एक ऐसा वायरस है जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देता है।
1: और जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम

0: कमजोर हो जाती है, तब वह स्थिति एड्स कहलाती है।
1: लेकिन दोस्तों, सही इलाज, समय पर जांच और जागरूकता के लिए जरिए HIV संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य और लंबा जीवन भी जी सकते हैं।
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, आज भी बहुत लोग HIV एड्स के नाम से डर जाते हैं और संक्रमित लोगों से दूरी बनाने लगते हैं।
1: हाँ मुर्शिद, जबकि सच यह है कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, गले मिलने से या साथ खाने से नहीं फैलता है।
0: जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही बहुत खास बात है कि यह मुख्य रूप से चार कारणों से फैलता है।
1: अच्छा
0: पहला है असुरक्षित यौन संबंध,
1: जी
0: दूसरा है संक्रमित रक्त चढ़ाने से,
1: जी
0: तीसरा है संक्रमित सुई या सिरिंज के इस्तेमाल से,
1: जी
0: और चौथा है संक्रमित माँ से बच्चे में।
1: तो इसलिए जागरूकता और सावधानी बहुत जरूरी है ना?
0: जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे पहली बार 1998 में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य HIV वैक्सीन रिसर्च को बढ़ावा देना और लोगों को इस लड़ाई में शामिल करना है।
1: और आज दुनिया भर में वैज्ञानिक HIV की प्रभावी वैक्सीन बनाने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरी तरह सफल वैक्सीन नहीं बन पाई, लेकिन उम्मीद और प्रयास लगातार जारी है मुझे।
0: दोस्तों, HIV एड्स से भी बड़ी बीमारी है भेदभाव। समाज में कई लोग HIV एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को गलत नज़र से देखते हैं।
1: जबकि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सहयोग, प्यार और अपनेपन की।
0: जी हाँ श्रोताओं, हमें समझना होगा कि HIV संक्रमित व्यक्ति भी हमारी तरह एक इंसान है, उसे भी सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है।
1: अगर समाज सहयोग करे तो कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर महसूस नहीं करेगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, युवाओं की भूमिका इस अभियान में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के युवा अगर जागरूक होंगे तो आने वाला समाज भी सुरक्षित और जागरूक बनेगा।
1: दोस्तों, स्कूल, कॉलेज और समाज में HIV के बारे में खुलकर बात करना ज़रूरी है ताकि गलतफहमियां दूर हो सकें।
0: जी हाँ बिल्कुल साजिद, आपने सही कहा। और याद रखिए, चुप्पी नहीं, जानकारी ही बचाव है।
1: मुर्शिद, क्या HIV का इलाज संभव है? ज़रा आप बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: हाँ देखिए दोस्तों, अभी HIV को पूरी तरह खत्म करने वाली दवा नहीं है, लेकिन ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जिनसे वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे एंटी रेट्रोविरल थेरेपी यानी ART कहा जाता है।
1: और समय पर इलाज शुरू हो जाए तो HIV संक्रमित व्यक्ति भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
0: इसलिए अगर किसी को संदेह हो तो बिना डर के HIV टेस्ट करवाना चाहिए।
1: दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि जागरूकता सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, यह लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है।
0: हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज को सही जानकारी देकर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।
1: और एक छोटी सी जागरूकता किसी की जिंदगी बचा सकती है।
0: बिल्कुल, तो आइए आज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, भेदभाव को खत्म करेंगे और हर व्यक्ति के साथ सम्मान और संवेदनशीलता का व्यवहार करेंगे।
1: क्योंकि स्वस्थ समाज वही है जहां हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिले।
0: जाने से पहले एक खूबसूरत संदेश, जागरूक बने, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।
1: और याद रखिए, HIV से लड़ाई संभव है अगर साथ हो जागरूकता और इंसानियत की।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कबीर सिंह, बेख्याली बोल थी, आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। मुर्शिद,
1: जी
0: गर्मियों का मौसम चल रहा है,
1: बिल्कुल
0: बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो क्यों ना थोड़ी चर्चा
1: हाँ
0: इस पे भी
1: बिल्कुल,
0: की
1: इस
0: जाए।
1: पर तो चर्चा होनी ही चाहिए।
0: दोस्तों, इन दिनों पटना में गर्मी अपने चरम पर है। सुबह होते ही तेज़ धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान करने लगती हैं।
1: जी हाँ साजिद, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। सड़कें तप रही हैं और लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं।
0: सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो रोज़गार के लिए बाहर निकलते हैं, जैसे रिक्शा चालक, मजदूर, दुकानदार और ट्रैफिक पुलिस।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, दोपहर के समय पटना की सड़कों पर पहले जैसी चहल पहल भी कम दिखाई देती है। लोग जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं।
0: मुर्शिद, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को पहले से सतर्क रहने की ज़रूरत है।
1: जी हाँ साजिद, आपको लगता है कि यह सिर्फ मौसम का बदलाव है या इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं?
0: देखिए मुर्शिद, इसके पीछे कई कारण, लगातार पेड़ों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, वाहनों का धुआं और जलवायु परिवर्तन, ये सभी गर्मी बढ़ने की बड़ी वजह है।
1: बिल्कुल सही कहा साजिद आपने, पहले मोहल्लों में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे जिनकी छांव लोगों को राहत देती थी, लेकिन अब पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है।
0: जी हाँ मुर्शिद, और यही वजह है कि शहरों में हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ रहा है। कंक्रीट और डामर दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात में भी वातावरण को गर्म बनाए रखते हैं। तो मुर्शिद, बातें तो होती रहेगी, क्यों ना अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाया जाए।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म स्वेटी विट्स एनआरआई। बोल थे मुसाफिर आतिफ असलम और पलक मुछल की आवाज़ में। मुर्शिद, संगीत से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे गर्मी के बारे में।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, बढ़ती गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनती जा रही है। लू लगना, डिहाइड्रेशन, सिर दर्द और थकान जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं।
0: डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नींबू पानी, ORS, लस्सी और फलों का सेवन शरीर को ठंडक पहुंचाता है। फलों में जैसे मुर्शिद, कौन कौन से ज़्यादा फल अभी गर्मियों में यूज़ करना चाहिए?
1: बिल्कुल। अभी
0: जैसे
1: आप
0: तरबूज।
1: तरबूज

0: जी
1: खा सकते हैं, और संतरा भी आप ले सकते हैं,
0: खीरा,
1: खीरा भी ले सकते
0: इसमें
1: हैं,
0: पानी का मात्रा ज़्यादा होता है।
1: बिल्कुल। और इस तरह के
0: और
1: बहुत सारे फल हैं, और
0: जी
1: बाहर निकलते समय सिर को ढकना बहुत ज़रूरी है, जैसे छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।
0: और बच्चों बुज़ुर्गों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन पर गर्मी का असर जल्दी होता है, उन पे जो गर्मी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी असर करता है।
1: बिल्कुल। साजिद, क्या आपको लगता है कि युवा भी पर्यावरण को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं?
0: बिल्कुल मुर्शिद, युवा ही तो सब कुछ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे अगर हर युवा साल में सिर्फ एक पेड़ लगाए, उसकी देखभाल करे, तो आने वाले समय में काफ़ी बदलाव देखा जा सकता है।
1: इसके अलावा हमें बिजली और पानी की बर्बादी भी रोकनी होगी। छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
0: और दोस्तों, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी, बिल्कुल सही कहा साजिद आपने। पटना जैसे शहरों में अगर हम हर मोहल्ले में हरियाली बढ़ाएं, तो तापमान को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
0: और मुर्शिद, सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी आगे आना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि रोज़ की जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मौसम बदल रहा है और हमें भी अपनी आदतें बदलनी होंगी। सुरक्षित रहिए, पानी पीते रहिए, और दूसरों को भी जागरूक बनाइए।
0: मुर्शिद, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो परिंदों का भी ख्याल रखना चाहिए हम
1: बिल्कुल।
0: लोगों को।
1: छतों पर हम लोग पानी रख सकते हैं,
0: जी
1: बालकनी में जहाँ पर परिंदे आ सकते हैं वहाँ पर
0: जी
1: हम लोग पानी रख सकते हैं। जहाँ भी सुविधा हो तो हम उनकी इस तरह से ख्याल रख सकते हैं।
0: और दाना पानी बहुत
1: हाँ, दाना
0: ज़रूरी है
1: भी
0: परिंदों के लिए।
1: दे
0: अभी
1: सकें।
0: इतनी गर्मी पड़ रही है, तो तालाब पानी, नदियाँ जो सूख
1: सूखे
0: जाती
1: पड़े हैं,
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: परिंदे इधर उधर परेशान होते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी अपने छतों
1: हाँ,
0: पर
1: हर घर
0: पानी।
1: पे
0: जी
1: बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जो भी हो, आप कम से कम परिंदों के लिए, चिड़ियों के लिए इतना ज़रूर करें कि उसके लिए भी पानी आप रख दिया करें।
0: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं अब एक प्यारा सा सॉन्ग।
2: अरे, हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: का खेल खराब कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराकर उसकी प्ले ऑफ की राह मुश्किल करने के साथ साथ अंतिम 4 में पहुंचने की उम्मीदों को जीवित रखा है।
1: दोस्तों, आज का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की नज़रें प्ले ऑफ पर होंगी। अंक तालिका में हैदराबाद 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है, तो वहीं सुपर किंग 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर मौजूद है। ऐसे में यह जीत दोनों टीमों के लिए काफ़ी मायने रखती है।
0: तो आज का जो मुकाबला है काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, और दोनों टीम जो है प्ले ऑफ की रेस में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की।
1: बिल्कुल दोस्तों, स्पोर्ट्स अपडेट में सबसे पहले आपको बता दें कि आरसीबी ने आईपीएल 2026 के ले ऑफ में जगह पक्की कर ली।
0: प्ले ऑफ में जगह पक्की कर ली।
1: पहली टीम बन चुकी है आरसीबी 18 अंकों के साथ अंक तालिका में पहले नंबर पर मौजूद है। कल खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हराकर अपनी जगह पक्की कर ली।
0: दोस्तों, वही दूसरी तरफ दिल्ली ने जीत हासिल करके राजस्थान रॉयल्स

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सुल्तान से ये प्यारा सा सॉन्ग। गीत के बोल थे जग घूमिया और गीतकार थे राहत फ़तेह अली खान। अब हम लोग बातें करेंगे रोचक तथ्य की।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवानी और आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, अरे वाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार सेगमेंट।
0: जी तो श्रोताओं, क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 3 दिल। इनमें से 2 दिल शरीर में खून पहुंचाते हैं और 1 दिल पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित करता है।
1: दोस्तों, एक इंसान अपने पूरे जीवन में लगभग 25 साल सोने में बिताता है,
0: बिल्कुल।
1: यानी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सपनों में गुजर जाता है।
0: तो दोस्तों, आगे आपको लेके चलते हैं। और दोस्तों, कंगारू पीछे की तरफ नहीं चल सकते, उनकी पूंछ और शरीर की बनावट उन्हें पीछे जाने नहीं देती।
1: वाह दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना? ऐसे ही मज़ेदार तथ्यों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
0: दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड आज भी 1 2 3 4 5 6 है ना?
1: जी
0: खास। तो अगर आपका भी यही पासवर्ड है तो तुरंत बदल दीजिए और सुनिए यह प्यारा सा सॉन्ग।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्म हिना से ये प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे, जिसके बोल थे चिट्ठिए पंख लगा के। आवाज़ें थी लता मंगेशकर की।
1: मुर्शिद, आज सोमवार है
0: जी हाँ,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: क्यों ना थोड़ी बहुत चर्चा तकनीकी सोमवार पे भी हो जाए।
0: हाँ,
1: दोस्तों, आज का विषय बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी है।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। हर कोई रूबरू है AI से और हर कोई इस्तेमाल कर रहा है AI।
1: आज AI सिर्फ फिल्मों या साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं है।
0: आपका मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, यहाँ तक कि खेती और पढ़ाई, हर जगह AI का इस्तेमाल हो रहा है।
1: दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि AI है क्या।
0: जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर जो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और निर्णय ले सके।
1: इसे आसान भाषा में समझिए। अगर हम किसी बच्चे को हजारों बिल्लियों की तस्वीर दिखाएं, तो वह पहचान सीख जाता है
0: जी हाँ,
1: कि
0: बिल्कुल।
1: बिल्ली कैसे दिखती है। ठीक वैसे ही AI भी लाखों उदाहरण देखकर सीखता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने साजिद। दोस्तों, अब बात करते हैं AI कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है।
1: जैसे स्मार्टफोन, आज के फोन में कैमरा AI से फोटो बेहतर बनता है, वॉइस असिस्टेंट आपकी बात समझता है और कीबोर्ड

0: आपके अगले शब्द का अनुमान लगाता है।
1: जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। शिक्षा एआई आधारित एप्स बच्चों की कमजोरियां पहचान कर उसे हिसाब से पढ़ाई करवाते हैं। दोस्तों, अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, एआई बीमारियों की पहचान तेजी से कर सकते हैं। कुछ अस्पतालों में एआई एक्सरे देखकर बीमारी पकड़ने में डॉक्टरों की मदद करता है।
0: और हाँ मुर्शिद, अब तो किसान भाई भी हमारे जो
1: एआई का
0: खेती करते
1: इस्तेमाल
0: हैं तो
1: करने
0: वो
1: लगे
0: भी एआई का
1: हैं।
0: इस्तेमाल करते हैं
1: जी हाँ,
0: कि मौसम का अनुमान कैसा है, मिट्टी की
1: मिट्टी की
0: गुणवत्ता जो है
1: गुणवत्ता
0: उसकी
1: कैसी
0: भी
1: है
0: माप सकते हैं, और फसल की बीमारी की जो जानकारियाँ हैं
1: भी वहां से
0: वो।
1: प्राप्त करते हैं।
0: जी तो मुर्शिद, अब तो वक्त हो चला है
1: जी बिल्कुल। तो क्या श्रोताओं को एक
0: एक।
1: आखिरी सॉन्ग सुना दिया जाए?
0: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों आज के युवानी कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें अनुमति, अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ।
1: मगर हाँ दोस्तों, अपनी शिकायतें और सुझाव इस पते पर जरूर भेजें। हमारा पता है
0: feedback@AIR पटना। अपना ख्याल रखिए, जागरूक बनिए। नमस्कार।

युवाओं का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: आती सुने वाला सबन सुनिहार लोगन के सांझ के बेरा में एक बार फिर उसे राउर विनीता के प्रेम भरा नमस्कार। आ देखी हरमेश नियन हम रोवा लोगन खातिर नीक नीक बात के जोरे कुछ नीमन लोक गीत भी लेके आए बनी। और यह बीच में हम सुनवाएं रोवा सभी के गुवारता डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी से, जिकर विषय हो कि आधुनिक युग में पति पत्नी के रिश्ता और महिला के दृढ़ संकल्प। बाकी यही बीच आज एगो बहुत ही खास दिन भी बा। आ जानत आनी वो खास दिन का है? उ हर बरिस के 18 मई माने आजुए के दिन मनावे जाए।

वाला अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय मने खाली म्यूजियम मत बुझा, काहे कि संग्रहालय खाली पुरान मूर्ति आ सिक्का राखे के जगह ना, बलुक ई हमनिन के पुरखन के धाती है, हमनिन के इतिहास के गवाह है। आ इहे चलते आजू के दिन पूरा दुनिया में ई दिवस के मनावल जाला, जैसे हमनिन के अपन इतिहास आ संस्कृति के सहेज सके के सीख मिले। ई दिवस के बरिस 1977 से इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा मनावल जाता। आ हर बरिस एकर एगो खास विषय होला। उहे तरह अब की बरिस एकर विषय विभाजित दुनिया के एकजुट करे वाला संग्रहालय बा। एकर मने कि भले दुनिया में कितनो झगड़ा लड़ाई होखे, बाकी संस्कृति या इतिहास हम इनके आपस में जोड़ेला। अब देखी हमनिये के दादा परदादा जब मॉरिसस, सुरिनाम, भा फिजी गए रहन, तो अपना संगे जहजिया कोली के रूप में का लेके गए रहन, तुलसी के पौधा, रामायण के पोथी और अपन गीत। आज वही देशन में ओकर संग्रहालय बा, जे हमने इनके माटी के महक के सात समुंदर पार भी जिंदा रख ले बा। आ जाना तनी कि ना एगो औरी बात, आजू के दिन देश के बड़ बड़ सरकारी संग्रहालय जोन बा ओमें प्रवेश एकदम मुफ्त रहेला, माने मंगनिये में बिना कोनो टिकट के जाई या देखी सभे होई जा राखल दीदारगंज के यक्षिणी के मूर्ति और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश। आ सारनाथ संग्रहालय में तो हमने के देश के शान अशोक स्तंभ के असली सिंह चतुर्मुख राखल बा, जेकरा के देखला पसीना गर्व से चाकर हो जाला। ऐसे हम तो कहम कि आगे से अपन लइकन बच्चन के जरूर ले जाएं अपन नजदीकी संग्रहालय में, आ बताई कि हमने इनके पुरखा लोगिन कितना महान रहन, हमने इनके संस्कृति कितना धनी बा। जब ले हमने इनके अपन इतिहास ना जानम, तब ले आगे कैसे बढ़म। लेकिन हाँ, इस सब के साथ ही बहुत जरूरी बा कि हम रोवा लोग इनके मन भी लगवावत रहें। तो चलें, काहे ना हो खातिर सुनवाई हम एगो लोकगीत मीना सिंह जी से। तो सुनी सभी पहले यह गीत के।

0: भूत निमन देवी माई के गीत लागल ह। आगे भी इनका से ऐसने निमन गीत हम जरूर सुनवाएं रउआ सभी के, लेकिन ओकरा से पहले हम रउआ लोगिन से एगो बहुते जरूरी बात कहल चाहतनी, जेकरा बिना हमनिन के जिंदगी नरक समान हो सकेला। हमनिन के देहात में एगो कहावत कहल जाला, रउआ सभी जरूर सुन ले हुकम, जहाँ सफाई वहाँ लक्ष्मी के वास, माने जहाँ साफ सफाई रही वहाँ लक्ष्मी रही हैं। आ लक्ष्मी केकरा निमन ना लागस, लेकिन तबहू बहुते लोग ऐसा भेटा जाइ हन जे अपन घर द्वार तो एकदम चकाचक राखेलन, अपनहू एकदम जीट जाट में रहेलन, लेकिन बगल के द्वार चाहे सड़के पर घर के सब बाहर ना फेंक आवेलन। साफ सफाई कोनो देखावा के चीज ना है, बल्क ई हमनिन के सेहत से जुड़ल सबसे बड़ जरूरत है। साफ सफाई के मतलब खाली देह चमकावल भा नया कपड़ा पहिरले ना होला, बल्क एकरा पर हर तरह से ध्यान देवे के चाहिए। शरीर के सफाई, घर के सफाई या अपन समाज मोहल्ला के सफाई, इस सबन पर ध्यान दे के हमने अपन देश के स्वच्छता के ख्याल रख सकतनी। ऐसे बहुत जरूरी बा कि हमने सबन मिल के साफ सफाई के महात्म के खाली समझबे ना करी, बल्क करबो करी। आ हमरा पूरा भरोसा बा कि रउआ लोग इन बात के जरूर ध्यान रखम, आ स्वच्छ रखते हुए स्वस्थ रहम। आ बस ये तो हम चाहिला कि हमार सबन सुनिहार लोगिन हमेशा स्वस्थ सानंद रह। आ स्वस्थ सानंद रहे खातिर स्वच्छता के संगे संगे एगो औरी बात बा जो उनकी बहुते जरूरी होला, आ उ होला घर के भीतरा पति पत्नी के आपसी सहयोग भरल रिश्ता। काहे रउआ सभी भी हमारे बात से सहमत बानी नो, तो आई इहे विषय से जुड़ल एगो वार्ता सुनवाई हम रउआ लोगिन के डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी से, जेकर विषय ह आधुनिक युग में पति पत्नी के रिश्ता और महिला लोगिन के दृढ़ संकल्प। तो सुनी सभी पहले ए वार्ता के।
1: आज के जमाना में पति या पत्नी के रिश्ता और नारी संकल्प शक्ति खाली एगो सामाजिक बतकही नहीं खे, बल्कि हमनी के घर परिवार के आत्मा बा, हमनी के समाज के नींव बा, आ वो नारियन के समर्पित बा जे अपन सपना आ अपना परिवार के बीच पुल बन के हर रोज खड़ा रहली। ई विषय उह मर्दन के भी समर्पित बा जे अपना घरनी के ताकत के जानेलन, उनकर मान आ सम्मान करत आगे बढ़े के मौका देलन। भारतीय संस्कृति में ब्याह खाली दू आदमी के मिलने ना हो, बल्कि दू आत्मा, दू परिवार आ दू जिंदगी के पवित्र संगम हवे। यहाँ पति या पत्नी के एक दूसरा के पूरक मानल गइल बा। हमनी के शास्त्र में कहल गइल बा गृहिणी गृह मुच्यते, माने घर के घर बना

आवे वाली गृहिणी होली। आज के युग में तेजी से बदलाव हो रहा बा, पढ़ाई लिखाई में फैलाव आइल बा, नारी जागरूकता बढ़ल बा, आर्थिक आज़ादी आइल बा, आ यही के साथे रिश्ता के परिभाषा भी नया रूप लेवे लागल बा। ये बदलाव स्वाभाविक बा, स्वागत योग बा, बाकी एकरा संगे कुछ नया चुनौती आइल बा जेकर सामना हमनी के मिल के करे के होई। भारतीय संस्कृति में ब्याह 16 संस्कार में एगो पवित्र वचन ह, एगो आध्यात्मिक बंधन ह, जौन जन्म जन्मांतर तक चलेला। अर्धांगनी पति के आधा आत्मा होली। सप्तपति के 7 वचन में बतावल गइल बा कि ब्याह खाली खाना कपड़ा छत के व्यवस्था ना हो, बल्कि संगे बढ़े के साथे सीखे के, संगे संघर्ष करे आ आनंद लेवे के वचन आ हर कदम पर संगे रहे के वादा हो। रामायण में सीता राम के घर गृहस्थी हमनी के सिखावेला कि प्रेम खाली सुख में नहीं खे, बल्कि दुख में, वनवास में, संघर्ष में भी अटल रहेला। सवित्री आ सतवान के कथा हमनी के बतावेला कि एगो घर वाली के संकल्प शक्ति मृत्यु के हरा सकेला। ये पुरान कथा नहीं खे, बल्कि हमनी के सांस्कृतिक चेतना के खंभा बा। ब्याह के पवित्रता तब और बढ़ जाला जब दोनों पति पत्नी एक दूसरा के मान करेलन, एक दूसरा के आज़ादी के स्वीकार करेलन, भाई मिल के जिंदगी के चुनौती के सामना करेलन। यह पवित्रता के बनौले रखल आज हमनी के जवाबदेही बा। भारतीय संस्कृति में जहाँ नारी के पूजा होखेला वहाँ देवता निवास करेलन। यत्र नार्यस्यतु पूज्यते रमते तत्र देवता। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से लेके 21वीं सदी तक भारतीय समाज में क्रांतिकारी बदलाव आइल बा, जौन हमनी के रिश्ता आ परिवार के गहराई से प्रभावित कैलस। औद्योगिकरण आ शहरीकरण जहाँ मौका के नया दरवाजा खोललस, वहीं मिलल जुलल परिवारन के तुर के एकल परिवार के जमाना ले आई। ये बदलाव से पति पत्नी के रिश्ता पर दोहरा असर पड़ल। एक ओर दोनों के अधिक आज़ादी या निजता मिलल, दूसर ओर बड़ बुजुर्गन के मार्गदर्शन आ बिना सामूहिक परिवार के भावनात्मक सहारा दूर हो गई। इंटरनेट आ सोशल मीडिया संवाद के नया रूप दिलस। बाकी विडम्बना ई बा कि एक छत के नीचे रहे वाला लोग अपन अपन मोबाइल स्क्रीन में भुलाई रहलन, दुनिया भर से जुड़ल रहे के भ्रम पालत, अपना सबसे करीबी लोगन से दूर हो जा रहल बढ़न। नारी शिक्षा और नारी रोजगार में जो बढ़ोतरी भइल बा, उ निश्चित रूप से एगो सकारात्मक आ स्वागत के लायक बदलाव बा। आज के नारी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उद्यमी, शिक्षक, सैनिक आ नेता बन रहल बड़ी। बाकी यह बदलाव के संगे समाज के मानसिकता उतना जल्दी नहीं बदलत जौन तनाव के लम्हर कारण बा। मर्दन के भूमिका भी धीरे धीरे बदलत बा। आज के जवान बाप बच्चा के स्कूल छोड़े जाता, रसोई में मदद करता, घरवाली के कैरियर खातिर समझौता करता। ये बदलाव अभी पूरा नहीं भइल, बाकी शुरुआत हो चुकल बा। पति पत्नी के रिश्ता में खाली भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि आर्थिक समझ, मानसिक तालमेल, परस्पर सम्मान आ भावनात्मक परिपक्वता भी जरूरी बा। ई रिश्ता अधिक जटिल बा, बाकी अधिक समृद्ध आ अर्थपूर्ण हो सकेला। संकल्प शक्ति ई दूगो शब्द नहीं खे, ई एगो ऐसन ऊर्जा बा जे भारतीय नारी के रोम रोम में सदियों से बसत आइल बा। ई खाली जिद नहीं खे, ई खाली बगावत नहीं खे। संकल्प शक्ति के मतलब बा अपन लक्ष्य के प्रति अक्षर प्रतिबद्धता, भारी से भारी संकट के घड़ी में अपन रास्ता खोज लेवे के ताकत, प्रेम से, धैर्य से आ दृढ़ता के साथ अपन बात कहे के हिम्मत। जब कोनो माई अपना बीमार लड़का के माथ पर सौंसे रात हाथ फेरत रहली, जब कोनो घरवाली अपना पति के नाकामी में उनकर सपना के अपन सपना मान के उनका कंधा से कंधा मिला के लड़ेली, जब कोनो बेटी समाज के रूढ़िवादिता के सोच के तुर के अपन पहचान बनावेले, जब कोनो विधवा अपना छोट छोट बच्चन के पढ़ावे खातिर दिन रात मेहनत करेली, जब एगो गाँव के नारी स्वयं सहायता समूह बना के दूसर नारियन के रोजगार देवेली, ई उनकर संकल्प शक्ति। भारतीय नारी हर युग में ई साबित कैली, चाहे उ झांसी के रानी लक्ष्मीबाई होखस, मदर टेरेसा होखस, कल्पना चावला होखस, पीटी उषा होखस, भाई आज के उ साधारण गृहिणी जे हर रोज असाधारण काम करतरी। संकल्प शक्ति हर भारतीय नारी के विरासत आ उनकर पहचान बा। एगो स्वस्थ आ सुखी घर गृहस्थी के नींव दूगो खंभा पर टिकल होला। बराबरी आ मान, बराबरी के मतलब दोनों के विचारन के, भावना बन के, फैसलन के बराबर अहमियत मिले। मान के मतलब बा शब्दन में, व्यवहार में आ विचारन में एक दूसरा के उचित जगह देवे। आज के डिजिटल जमाना में जहाँ सोशल मीडिया पर रिश्ता परफेक्ट देखावल जाता, वहाँ असली जिंदगी में संघर्ष बा।
यही से आज और जरूरी बा कि हमनी आपन असली रिश्ता जौन घर में बा ओके समय दी आ मान सम्मान।

शादी एगो परिवार तब फूलेला फलेला जब उनकर दोनों खम्हा एक दूसरा के ताकत बने। आज के भारतीय नारी एगो ऐसन जोधा बारी जे दू मोर्चा पर एक साथे डट के खड़ा बारी। एक ओर बा उनकर नौकरी काम के जिंदगी जहाँ उ घंटन काम करेली समय सीमा के पूरा करेली अपना बॉस आ संगतियन के उम्मीद पर खड़ा उतरेली आ अपन काबिलियत साबित करेली। दूसर ओर बा उनकर घर परिवार के जिंदगी जहाँ उ माई बारी घरवाली बारी बहू बारी बेटी बारी जहाँ उनका से ये उम्मीद कल जाला कि घर भी उतने व्यवस्थित रहे बच्चन के परवरिश में कोनो कमी ना होखे बड़ बुजुर्गन के देखभाल होखे। ये दोहरी भूमिका के समाज के पहचाने के हुई सराहे के हुई आप पति के चाहिए कि यह बोझ के बांटे काहे कि एगो स्वस्थ परिवार के जिम्मेवारी खाली नारी के नहीं खे ये दोनों के मिलल जिम्मेवारी बा। जब नारी आर्थिक रूप से आज़ाद होखेली तो उनका जिंदगी में रिश्ता ताकतवर बन जाला आत्मविश्वास बढ़ जाला आ उ आवरी स्वतंत्र हो जाली एगो कमाए वाली घर वाली पूरा परिवार के सहारा बन सकेली। ये खाली आर्थिक मदद नहीं खे बल्क ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी पूरा परिवार के मजबूत बनावेला। आज के डिजिटल जमाना में एगो अजीबो विरोधाभास बा मोबाइल फोन हर हाथ में बा सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त बालन व्हाट्सएप दिन रात संदेश आवता जाता बाकी पति पत्नी आपस में खुल के बात कम करत बालन एक छत के नीचे एक खटिया पर रह के भी दोनों बेकत के बीच कोसन दूरी देखे के मिलता। ये दूरी के पाटे के पड़ी एकरा खातिर आपस में खुला ईमानदार आ सम्मानपूर्ण बातचीत साथ समय रिश्ता के संजुनी बा। इतिहास के पन्ना पलटला पर हर युग में भारतीय नारियन के संकल्प शक्ति के अनगिनत कथा हमनी के प्रेरित करत रुआ खड़ा कर देवेला। रानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में तलवार उठावला से लेके एगो माई या घरवाली के रूप में भी अपन कर्तव्य के पालन कैली। कल्पना चावला एगो हरियाणवी परिवार के बेटी जे अंतरिक्ष तक पहुँचली ए यात्रा में उनकर पति जीन पियरे हायसिन के बहुत बड़ योगदान रहल उनका सपना के सहारा दिलें। ये पति पत्नी के साझेदारी के अद्भुत नमूना बा। इंदिरा गांधी जी घरवाली माई आ प्रधानमंत्री के रूप में देश के नया दिशा दिली आ साबित कैली कि नारी शक्ति के कोनो सानी नहीं खे। मेरी कॉम मणिपुर के गांव के बेटी जे बॉक्सिंग विश्व चैंपियन बनली उनकर पति घर आ बचन के जिम्मेवारी उठौलें आ उनका के आगे बढ़े के रास्ता दियलन। ऐसे बढ़ के उ करोड़ों अनाम नारी जे गांव के खेत में काम करेली अपना बच्चन के पढ़ावेली परिवार के एकजुट रखेली यह सांच संकल्प शक्ति। जब नारी संकल्प लेवेली तो उ खाली अपने जिंदगी नहीं बदल ले बल्कि पूरा परिवार समाज के भविष्य बदल देवेली। जहाँ पति पत्नी प्रेम से रहलन वहाँ बच्चा भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करेलन उनकर मानसिक विकास बेहतर होखेला एगो स्वस्थ घर गृहस्थी के रिश्ता पूरा पीढ़ी के निर्माण करेला। पति पत्नी के स्वस्थ रिश्ता सबसे लम्हर विरासत बा जे उ अपना बच्चन के दे सकेली। जब हमनी नारी सशक्तिकरण के बात करी ले तो हमनी के नज़र अक्सर शहरी नारियन के सफलता पर जाला बाकी भारत के असली तस्वीर उनकर 7 लाख से अधिक गाँवन में बा। ये नारी हमनी के सबसे बड़ ताकत बारी जे भिनसरे 4 बजे उठ के पशुअन के चारा पानी डाले से लेके खेत खरिहान के काम करेली बच्चन के देख रेख से लेके साँझ के चूल्हा चौका जलावला तक उ बिना कोनो सशक्तिकरण के नारा के रोज अपना वीरता के प्रदर्शन करेली। आज देश भर में स्वयं सहायता समूहन के माध्यम से लाखों नारी आर्थिक रूप से आज़ाद हो रहल बारी अपना गांव के आर्थिक आ सामाजिक ढांचा के बदल रहल बारी। महाराष्ट्र के जलयुक्त शिवार अभियान होके राजस्थान के पानी आंदोलन होके भाई केरल के कुदुमनी चाहे बिहार के जीविका दीदी हर जगह नारियन के संकल्प शक्ति इतिहास के बदललस। पंचायत राज व्यवस्था में नारियन के 33% निर्वाचित महिला प्रतिनिधि गाँव गाँव से लेके संसद तक नीति बनावत बारी। गाँव देहात के घर गृहस्थी में भी बदलाव के हवा चल रहल बा। जब घरनी भी कमाए लागल बारी जब वो पंचायत में जाए लागल बारी पति के नजरिया भी बदलल बा। ये बदलाव धीमा बा बाकी निश्चित बा। आकाशवाणी रेडियो टेलीविजन मोबाइल सोशल मीडिया के माध्यम से सुदूर गांव में रहे वाली नारी भी अपना शक्ति के पहचान रहल बारी आ एमे अपन भागीदारी दे रहल बारी। जब घरनी आगे बढ़ियन तो समाज आगे बढ़ी आ तबे देश के उत्थान हुई। जहाँ रिश्ता में बराबरी आ मान सम्मान होला वहाँ नारी ना खाली खुश रहली बल्कि शारीरिक आ मानसिक रूप से भी अधिक स्वस्थ रहली। मर्दन के मानसिक स्वास्थ्य के भी नज़रअंदाज नहीं कल जा सकत। स्वस्थ घर गृहस्थी खातिर सुरक्षित जगह होके के चाही जहाँ दोनों अपन कमजोरी बिना झिझक के साझा कर सके। हर नारी के अपना खातिर समय मिले के चाही जौना से अपना रुचि अपना दोस्त आ अपना आत्मा के

0: आजगी दे सके। एगो खुशहाल आ स्वस्थ नारी ही स्वस्थ परिवार के जड़ होली। संकल्प शक्ति तब और ताकतवर होखेला जब नारी के अपन कानूनी अधिकारन के ज्ञान होखे। भारतीय संविधान के सभे के बराबरी के अधिकार देवेला, जना में नारी भी शामिल बारी, जना में गरिमा के संगे जिये के अधिकार बा। घरेलू हिंसा नारी संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिशोध अधिनियम, कार्यस्थल यौन उत्पीड़न अधिनियम, संपत्ति अधिकार जैसन कानून हर नारियन के संकल्प शक्ति के हौसला बढ़ा रहल बा। पढ़ाई लिखाई नारी संकल्प शक्ति के असली चाबी बा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहले बाड़न कि शिक्षा उ श्रेणी के दूध हवे जे ही पीही उहे दहारी। नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में तो और सही सटीक बा। जब एगो लड़की पढ़े ली तो उ अपन पहचान गढ़े ली आ उनका लगे विकल्प होला, उनका पास आवाज होला, उ अपन अधिकार के समझे ली। एगो पढ़ल लिखल नारी एगो कुशल घरनी, बेहतर माई आ एगो समझदार नागरिक होली। पढ़ाई लिखाई के अवसर घर गृहस्थी के संवारे सजावे में सहायक होला। पति पत्नी पढ़ल लिखल होले तो उनकर हर फैसला अधिक सोच समझ के होला। बच्चन के शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य आ समग्र विकास अधिक बेहतर होला। बेटी के पढ़ के का हुई इस तरह से सोच रखे वाला ना सिर्फ वो बेटी के भविष्य के नुकसान करता बल्कि पूरा परिवार आ समाज राष्ट्र के नुकसान करता। जब बेटी पढ़ी तबे घर परिवार तरक्की करी। हर बेटी के सपना जरूरी बा, उनकर आवाज जरूरी बा आ इस दुनिया में केहू से कम नहीं खी। ये संदेश उनकर संकल्प शक्ति के बल दीही। पति पत्नी के प्रतिस्पर्धा नहीं खी, उ तो एगो साझेदार बारी, उ पति के साथी बारी। पत्नी के सफलता में पति के अपन सफलता देखे के चाही, उनका सपना से अपना सपना से कम ना आके के चाही। जब उ थाकल होखस तो उनकर बोझ बांटी आ पत्नी के सही दिशा में उड़ान भरे में मदद करी। नारी असीम शक्ति बारी, कोनो भी पहाड़ के हिला सकेली। ये पुरुष के ताकत बारी, नारी के सही दिशा दीही। माई बाप भी अपना बेटियन के पढ़ाई आ उनकर सपना के उड़ान देव। नौजवान पीढ़ी ए देश के भविष्य बा, उहो अपन रिश्तन में प्रेम मान बराबरी लियाऊ। सोशल मीडिया पर देखावटी जिंदगी देखावे से बढ़िया बा कि उ असली जिंदगी में एगो अच्छा रिश्ता जियो। जब भी कोनो नारी कुछ हासिल करस तो उनका के सराह हो। जब भी कोनो मर्द अपना घरवाली के मान करत होके तो उनकर तारीफ करी। जे समाज अपन नारी के मान करेला उहे समाज महान होखेला।
1: साँचो बहुत ही निमन इनकर वार्ता लागल है, जेमे आजकल के युग में पति पत्नी के रिश्ता आ महिला समाज के दृढ़ संकल्प के बारे में इतना नीक तरह से बात कहले। इतना बढ़िया वार्ता खातिर डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी के तहे दिल से धन्यवाद बा। अब देखिए हम एगो और बात कहें रुआ सभी से कि देखते नुबानी कोना तरह से गर्मी एकदम हल्कान करके रख ले बा, तो ऐसन में बहुत जरूरी हो जाला कि अपन खान पान पर विशेष ध्यान रखल जाओ। उहो में सबसे जरूरी बात कि बासी खांसी तो एकदम ना खाए के चाहिए। तनिका से सामान सधावे के फेरा में कितना रुपया डॉक्टर भेरी जियान करे पड़ जाला। हाँ आजकल तो लोग खाना बच गईला पर फ्रिज में रख देता रहन, एकर मतलब भी बिल्कुल नहीं कि अब वो खराब ना हो। वो खाली बैक्टीरिया के बढ़े के रफ्तार के धीमा करेला, ओकरा के मारेला ना। ऐसे ओकरो में रख के कोनो चीज के मत खाएं। ऐसे नीमन होई कि खाना अंदाज से बनाएं। पुरखा लोग ऐसी नहीं खन कह गए कि पहला सुख निरोगी काया, सेहत बा तो सभी कुछ बा। ऐसे बासी खाना खाए से बाची ताजा खाएं, मस्त रही आ बीमारी के दूर भगाई। अब मस्त रहे खातिर एक और काम करें, हमने मीना सिंह जी से ई गीत सुन ली, तो सुनी सभी ई गीत।

वाह, बहुत ही नीक झूमर लागल है। दोनों गीत खातिर मैना सिंह जी के बहुत बहुत धन्यवाद बा। अब हमार भोजपुरी जनजीवन से जुड़ल एगो बहुत ही पुरान शब्द जे अब बहुत ही कम सुने के भेटाला, भतको चाउर। हमरा बहुत बढ़िया से याद बा कि इहे चाउर के कानून ही भुंजवा के फरही वाला भुंजा दादी बनवावत रहे। ओकरा के खास करके सांझ के बेरा में तेल प्याज सब मिला के मिचाई चाई डाल के लोग बहुत निक तरह से खात रहे। खास कर अगर हमार बात करी तो हम बहुत चाव से भोर पर चाय में डुबा के ओकरा के खात रही, बहुत ही निमन लागत रहे। अब तो भूंजा दुकान से लोग खरीदत रहन आ खात रहन, लेकिन ओह में ऊ मजा कहाँ जो दादी के चाउर उसन के बनावल उ भतको चाउर के भूंजा में रहत रहे। ऐसने एगो नया शब्द के साथे हम फिरू से आए रोआ लोगिन भी, लेकिन आज हमारे स्टूडियो के घड़ी कर रहल बा इशारा कि हमरा जाए के बेरा भ गई। त एही निहोरा के साथ कि अब हमरा के जाए देवल जाओ और विनीता के प्रणाम।

भोजपुरी कार्यक्रम आरती अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।

6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। शाम 6:30 पर ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा और हमारे किसान भाई खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7 बजे।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम। यह आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सभी संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण शुरू कइले बा। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र के साथे साथे राज्य के दोसर केंद्रन से सांझ के 6:05 पर प्रसारित कइल जाई। बुलेटिन के शुरुआत के मौका पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहले। एकर अलावा आकाशवाणी के केंद्राध्यक्ष HD सीडाम, उपनिदेशक समाचार अजय कुमार के संगे आकाशवाणी के अधिकारीगण और कर्मचारीगण के गरिमामयी उपस्थिति रहल। भोजपुरी समाचार बुलेटिन के न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुनल जा सकेला। एकर अलावा ई प्रादेशिक समाचार एकांश के बुलेटिन यूट्यूब चैनल AIR न्यूज _ पटना पर भी उपलब्ध रही। बताते चले कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के प्रसारण हो रहल बा। राज्य में आम जनता के समस्या के तुरंते और बढ़िया से निपटारा करे खातिर काल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर के शुरुआत हो रहल बा। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत ई पहल कल गइल बा, जेकर मुख्य मकसद सरकारी सुविधा और प्रशासनिक सिस्टम के सीधे जनता के द्वार तक पहुंचावे के बा। इस शिविर हर महीना के पहला और तीसरा मंगलवार के राज्य के सब ग्राम पंचायतन में लगावल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न की सहयोग कार्यक्रम के तहत जवन भी आवेदन मिली ओकर 30 दिन के भीतर निपटारा कइल एकदम जरूरी बा। मुख्यमंत्री अधिकारी लोगन के एह मामले में सचेत कइले। उ कहले कि समय पर काम के रिपोर्ट न देवे वाला अधिकारी लोगन के खिलाफ बड़ा एक्शन कइल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न की राज्य के औद्योगिक ढांचा के विकास हो रहल बाटे और अब लोगन के रोजगार खातिर बाहर जाए के कोनो जरूरत नहीं है। पटना के गांधी मैदान में अग्निशमन गाड़ी और AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष के उद्घाटन समारोह के संबोधित करत श्री चौधरी कहलन कि प्रदेश में नया उद्योग धंधा खातिर माहौल तैयार हो रहल बा। उ कहले कि राज्य में बुनियादी सुविधा के व्यवस्था पक्का कैला के बाद अब उद्योगन के स्थापना पर खास जोर दिहल जा रहल बा और बड़ बड़ औद्योगिक घराना प्रदेश में निवेश करे खातिर आ रहल बाने। मुख्यमंत्री बिहार के लोगन से राज्य के तरक्की खातिर वापस बिहार लौटे के अपील भी कैले। केंद्रीय खनन और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाए वाली मेमू सवारी गाड़ी के हरी झंडी दिखा के रवाना कैले। नरकटियागंज दरभंगा मेमू ट्रेन सेवा शुरू होला से चंपारण

और मिथिलांचल के एक बड़कन आबादी के बहुत फायदा मिली। इस मौका पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहले। रोहतास जिला के सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज सवेरे पटना सासाराम पैसेंजर ट्रेन के एगो बोगी में आग लग गई। इस दुर्घटना में कोनो जान माल के नुकसान भाकेहू के हताहत होके के कोनो खबर नहीं थे। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी सरस्वती चंद्र जनौले की फायर ब्रिगेड और रेल कर्मचारी लोगन के मदद से आग पर काबू पा लिहल गई बा। श्री चंद्र कहले कि आग लागे के कारण के जांच कल जा रहल बा। राज्य के ज्यादातर हिस्सा में भारी गर्मी और उमस की स्थिति बनल बा। मौसम विभाग आज रोहतास, भभुआ और बक्सर जिला के कई गो जगह लू चले के आशंका के देखत येलो अलर्ट जारी कैले बा। विभाग अपन पूर्वानुमान में कहले बा कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, उत्तर दक्षिण पूर्व इलाका में ज्यादातर जगह मौसम सूखा रही। एकरा वजह से

0: येलो अलर्ट जारी कैले बा। विभाग अपन पूर्वानुमान में कहले बा कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, उत्तर दक्षिण पूर्व इलाका में ज्यादातर जगह मौसम सूखा रही। एकरा वजह से अधिकतम तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़त दर्ज कल जा सकेला। वही जे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व हिस्सा में कई जगहन पर आज बारिश गिरे के संभावना बा। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन समाहरणालय सभागार में आवे वाला बाढ़ और सुखाड़ के स्थिति से निपटे खातिर कैल गई तैयारी के समीक्षा कैलन। सिवान मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ भइल मुठभेड़ में गहना दुकान में लूटपाट करे के मुख्य आरोपी अंकित कुमार घायल हो गई। ओकरा दोनों पैर में गोली लागल बा। पुलिस के देखरेख में सदर अस्पताल में ओकर इलाज चल रहल बा। रोहतास जिलाधिकारी उदिता सिंह आज जनजातीय गरिमा उत्सव के उद्घाटन कैली। काल से 25 मई तक जिला के 5 गो प्रखंड के 19 जनजातीय बहुल गांव में ई उत्सव के तहत कैंप लगावल जाई। शिविर में लोगन के सरकारी योजना के जानकारी देवे के साथ साथ जरूरतमंद लोगन के पहचान करके अलग अलग कल्याणकारी योजना से जोड़ल जाई। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत गुलामी। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार की रचना है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबन्धित प्रतिनिधि स्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिला विरुद्धम अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषणायोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबन्धित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वच्छोर्जायाः, नील अर्थव्यवस्थायाः, हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि, येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय, प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवाद।

0: भवान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक् इन् इण्डिया, मेड् विद् स्वीडन् इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वीडी सदीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्री सतीशनं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह एकविंशतिः सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चंद्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषी यतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिलाविरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्यमंत्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरम् अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृहसहकारिता च मन्त्री अमितशाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रियावाहनानाम्, आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल यानानाञ्च ध्वज प्रदर्शनपूर्वकं शुभारम्भं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थम् अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन्नवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहस्य उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिम एशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिम एशियायाः साम्प्रतिक स्थिति विषये अद्य नवदिल्ली नगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं, व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं, विद्युत्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरङ्गस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद, सिद्ध, योग, यूनानि, होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारम्परिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट न हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट न हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देश से जिनोवा नगरे आयोजिते 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा

0: अभी हम पढ़े हैं।
1: नमस्कार उदय भाई,
0: नमस्ते अंजला बहन,
1: की हाल चाल उदय भाई?
0: सब बढ़िया, सब ठीक ठाक बा?
1: हाँ चलो, ठीक रहे के चाहिए, और
0: हाँ।
1: बहुत जरूरी है ठीक रहना। का है कि ठीक आदमी जब रहा है तो हर काम में मन लगा है, सब काम बढ़िया से हो भाई। और तनिको मनिको मन खराब हो जाए तो फिर ओकरा से भाई काम धंधा चाहे कुछ भी, बहुत तरह के चीज है जो वो डिस्टर्ब जगह के रुंधा जाए।
0: अंजुला बहन, देखिए, बीमारी कई तरह के होला और ये शरीर है, कई बार कई तरह के संक्रमण हो जाला, कई बार ऐसा हूँ मौसमी कुछ बदलाव भइल तो वो सब से भी आदमी बीमार पड़ जाला। लेकिन कुछ बीमारी ऐसन बा जितना ओकर गंभीर असर होला कि आदमी ओकरा से बहुत आक्रांत हो जाला और समझी कि एक तरह से जीवन मरण से जूझे लगेला। आज हमनी का वही बारे में बातचीत करब। आज हमनी के बातचीत के जे मूल में बा वो बा एड्स, और
1: हाँ
0: आज विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है।
1: देखो, एड्स के तो भाई हम सब भी मैंने एड्स के नाम सुन के ही घबराहट लगे लगा है। और एक समय में एक इतना खौफनाक ये हले, धीरे धीरे आदमी थोड़ा सा अभ्यास हो जाथिन। तो ये आज विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है, यानी कि हर साल ये 18 मई के मनावल जा है। ये ऐसा खतरनाक बीमारी से न जाने कितना लोग काल के गाल में भी समा गए थे, और लोग के बीच एक सही जानकारी, क्योंकि बहुत सा भ्रांति भी हो जाए कभी कभी बीमारी के लेके, तो एक सही जानकारी होना भी जरूरी है, कैसे एक रोकथाम करल जाए, कैसे एक से बचल जाए। और यही कारण से है कि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस मनावल जाए लगे, ताकि सब लोग एक प्रति जागरूक होते और एक बचाव के उपाय के प्रति सजग रहते।
0: एड्स जीवा, एड्स में हमनी के शरीर के जे श्वेत रक्त कण, वाइट ब्लड सेल्स जे बा, उन खत्म होखे लगेला, डिस्ट्रॉय होखे लगेला। और यही से एकरा के एड्स कहल जाला कि एक इहा पूरा जित अंग्रेजी के हमनी के बात थी, लेकिन इहा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ई जोन वायरस जोनक से एकरा में जेकरा सही हो जाला, एच आई वी एड्स हमनी के ही से एकरा के कहिले।
1: हाँ
0: तो ई एच आई वी है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।

0: अब बा कहें कि होला कैसे, मूल तो बात यहाँ बा,
1: सही बात है।
0: ई जे बा सकरे के हमनी का जानत नहीं, सामान्य तौर पर यौन जनित रोग है। यदि एह तरह के कोनो आदमी जे एड्स से पीड़ित बा ओकरा संपर्क में अइला से, कोनो भी स्त्री पुरुष जे भी
1: एड्स से
0: संपर्क
1: पीड़ित
0: में
1: हथिन
0: यदि एह
1: कोई।
0: तरह के व्यक्ति के संपर्क में आ रहल बड़े, तो उनका ई बीमारी हो जाई, और बीमारी हो जाई ओकरा बाद होला कहे कि शरीर धीरे धीरे गिरे लागल। दोनों बात हम कहनी है कि एक तो जे बा ओकर जब शरीर में लड़े के क्षमता ना रही, हमनी का शरीर में जे बा
1: रोग
0: श्वेत रक्तकण जे बा उहे
1: प्रतिरोधक,
0: रोग प्रतिरोधक है,
1: हाँ
0: वो जैसे रक्षा तंत्र है हमनी का
1: रक्षा,
0: शरीर के,
1: हाँ
0: माने
1: सही
0: बुकी
1: बात।
0: जे मौका मिल गई तो फाइटिंग करे लगल बाहर के कि नो हमला कैले,
1: बिल्कुल
0: तो कैसे
1: बिल्कुल।
0: जेबा दुआरी पर जेबा उड़ रहेला तो भूखे लगेला।
1: भूख
0: वही
1: हाँ
0: मोहन
1: ये
0: बुझे
1: है।
0: कि ई जेबा
1: हाँ
0: आक्रामक होके जेबा वो युद्ध करेला और हमनी के शरीर के रक्षा करेला। तो जब इस तरह के स्थिति में जब शरीर के एक रक्षात्मक प्रणाली के नुकसान पहुंचेला, तो ये समस्या गंभीर हो जाला, और एकरा पर बहुत समय से लगातार काम हो रहल बा। 18 मई 1997 बड़ा ऐतिहासिक दिन रहे, जब तब के ब्रिटेन के जे राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रहीं बिल क्लिंटन, वहाँ का मॉर्गन स्टेट विश्वविद्यालय में यह बारे में एक लंबा भाषण देनी, एक व्याख्यान देनी, आ वहाँ का कहने की बहुत बड़का जिम्मेवारी बा वैज्ञानिक लोग के कि वहाँ सभे एड्स के टीका खोजी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो
0: और अभी तक हमनी का पूर्ण सफलता तो नहीं मिलल,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: लोग
0: यह दिवस के
1: प्रयास।
0: हमनी के
1: हाँ
0: मनावे के प्रयास ई बा, यह दिवस के हमनी के मनावे के उद्देश्य ई बा कि हमनी का एकरा दिशा में सुती ना आराम से ना रह
1: हाँ
0: जाए,
1: जे भी
0: लगातार प्रयास
1: वैज्ञानिक
0: जारी
1: लगल
0: रहे।
1: लगल हथिन, जे प्रयास करल हथिन, वैज्ञानिक हथिन, शोधकर्ता हथिन, चिकित्सक हथिन, बहुत सारे पेशेवर लोग लगल हथिन, तो ए दिवस में भाई उनखर उनका सम्मान, उनखर प्रोत्साहन और उनखर लगी बहुत जरूरी है, ताकि एकर मतलब सही टीकाकरण उपलब्ध हो सके। तो उदय भाई, हम सब तो बातचीत के लिए विश्व एड टीकाकरण दिवस के बारे में, और एक दिवस बहुत खास है आज, और वो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और जैसन कि अब सबको जान देते कि भाई संग्रहालय समझते कि एक ऐसा जगह जहाँ आदमी जा करके अपने इतिहास के बारे में, पूरे दुनिया में के इतिहास के बारे में बहुत आसानी से जान सक हथिन। तो एक धरोहर के संरक्षित करे वाला एक ठो जगह हो वह संग्रहालय, और बहुत सारे जानकारी, बहुत सारी शिक्षा एकरा से मिल रहा है कि कौन से देश में कब और कौन समय कौन घटना होले हल, कैसे लोग रह हलथिन, कैसे उनकर सांस्कृतिक गतिविधि रहले होत। तो ये सब संग्रहालय के माध्यम से हम सब जान जाही, इसलिए एकरा ये दिवस मनावे के उद्देश्य भी है कि लोग एक जागरूक होकर के जयथिन, और एक देश के दूसरे देश के सांस्कृतिक आदान प्रदान और उनकर रहन सहन के बारे में और इतिहास के बारे में जानकारी लेके शिक्षित होतीन।
0: निश्चित बहुत बढ़िया रुआ ए बारे में एक परिचय देनी है। संग्रहालय जे बा वो हमने की है ऐतिहासिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व के वस्तु जे बा ओकरा के संग्रह जे हमने का करी ले, और
1: बिल्कुल।
0: संग्रह करके कोनो एक जगह जब ओकरा के हमने का रखी ले, ताकि ओकरा से आवे वाला पीढ़ी जे वर्तमान पीढ़ी भी बा वो अपना ज्ञान के विस्तार कर सके, ओकर वो
1: बिल्कुल।
0: उद्देश्य के पूरा कर सके। तो ई जे बा ई प्रयास है एक जगह इस तरह के चीजन के संग्रह करे के।
1: बिल्कुल।
0: अब कई संग्रहालय हमने के यहाँ बहुत बा, जैसे कला संग्रहालय आर्ट म्यूजियम हमने का कही ले, ओकरा
1: बिल्कुल।
0: में चित्रकारी मूर्ति कला फोटोग्राफी आ सजावटी कलाकृति वगैरह रहेला। जब
1: बिल्कुल।
0: ऐतिहासिक घटना जे बा ओकरा से जुड़ल संग्रहालय भी हमनी के यहाँ बा, जेकरा के हिस्ट्री म्यूजियम हमनी के कहिले, ओकरा में बहुत सब चीज रुआ मिली, पौधा भी मिली, पुराना काल के जानवर मिली,
1: हाँ
0: पत्थर खनिज जे बा अपना यहाँ भी बहुत जगह जे बा ओकरा के रखल बा। तो उ बा विज्ञान संग्रहालय, एकरा में जे खोज होला, खोज से जुड़ल जे प्रयास रहेला, ओकरा से जुड़ल जे उपकरण और दूसर चीज हमनी के

0: इहाँ ओकरा के हमनी के संग्रह करी ले। एक तरह से स्थल संग्रहालय भी रहला जहाँ पुरातात्विक खोज जो होला
1: बिल्कुल
0: वो सब रहला। युद्ध के भी जे हमनी का जे सामान जैसे कई बार लड़ाई भइल तो में जे जे हथियार युद्ध पोत वगैरह उपयोग में आवेला तो उकरा के चाहे उकरा से जुड़ल दस्तावेज हम निकाल रखी ले। ये सब युद्ध और सैन्य संग्रहालय होला। फिर कुछ बाल संग्रहालय भी होला जहाँ खेल विज्ञान
1: बहुत
0: कला
1: तरह के
0: और
1: संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय भी है, इस तरह के बहुत तरह संग्रहालय है जहाँ की उससे वो विषय से संबंधित चीज के संरक्षित रखल जाए, दस्तावेज के संरक्षित रखल जाए। और बहुत अच्छा लगे है, जैसे हम एक बार घूमे गेली हल तो सलार जंग म्यूजियम, बहुत नामी म्यूजियम है, संग्रहालय है, और वहाँ तरह तरह के उस समय के इतिहास के बारे में, और ओकरा से देख के ही आदमी, मतलब जितना पढ़ के ना सीख सके उतना देख करके भी सीख
0: अच्छा
1: जाए
0: जी
1: कि
0: होला कि आदमी
1: हाँ।
0: जे सामान्य तौर पर जे ज्ञान वहाँ का पढ़ के अर्जित करी ले देखला से ओकरा बारे में बातचीत करके ज्ञान जे बा वो ज़्यादा बढ़िया से वहाँ का प्राप्त करी ले। अपने यहाँ पटना
1: बिल्कुल,
0: में भी
1: पटना में भी जैसे देखते हैं
0: हासिल
1: कि
0: है।
1: मौर्य कालीन सभ्यता के जो सब चीज यहाँ पर उपलब्ध है, और
0: बगले में
1: अगर
0: हमने के बा
1: हाँ अगर कभी मौर्य काल के जानकारी ले ले लेवेला है तो वो सब पटना संग्रहालय में जाकर के देखते हैं। तो इस तरह से जो है वो अच्छा, सब चीज के जानकारी मिल जाए, हर काल खंड के जानकारी संग्रहालय
0: निश्चित
1: में मिल
0: निश्चित
1: जाए।
0: आवश्यकता बा कि ये सब चीजन के प्रेरणा में अपना और अपना मानस पटल पर रख के रखें और ज्ञान अर्जन के जे अपन प्रयास बा ओकरा के और ज्यादा बढ़ाएं।
1: बिल्कुल
0: और हमनी का अपन प्रयास अब बढ़ाएं गीत को नहीं के तरफ
1: बिल्कुल
0: लोक
1: बिल्कुल
0: भजन आज के
1: हाँ,
0: कलाकार बनी हवलदार बलराम लाल
1: चला इनका से सुने ही
0: सुने।
1: लोकगीत।

0: वाह, बहुत ही सुंदर गीत। इनका से और आगे भी गीत सुनवे, लेकिन अब एगो समय हो गए है प्रायोजित कार्यक्रम के, और प्रायोजित कार्यक्रम सुनही बुनियाद।
1: सुने के
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। बुनियाद हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माय गॉड, कितने कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावे टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, जी हाँ ये विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं। हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर

0: सकते हैं। नोट कीजिए नंबर, नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005, ये नंबर है। इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ हाँ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब, क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियां देंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी, सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी, ये बीएससी इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने कुछ सारे बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। ये एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं, तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
0: नीरज जी, मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियो वैस्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
1: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं। कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहाँ कार्डियक सर्जरी हो रही है, तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ बुनियाद कार्यक्रम है। युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं, और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ, नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, ये नंबर है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, या रोजगार है ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
1: जी, क्योंकि जैसे पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं, यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश, और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ही वाइब्रेंट

0: कोर्स है और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है। ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001। नीरज जी, एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब तीन तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर, दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाप में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
1: सर, बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं जो रोजगार वाले, रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट, वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
0: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
1: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाए,
0: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800121001 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है, वहां आए, देखे, पढ़के, समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहां पढ़ाई होगी, और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर, शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
1: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है, और फैकल्टी जो हमारे हैं अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
0: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि

0: हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये सारी चीजें, तमाम चीजें हमारे युवा साथी उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं।
1: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और कई दफा तो ये लोग अब इस कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc करके फिर दे कैन कम इनटू एकेडमिक्स।
0: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी BSc इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अगले एपिसोड में भी आपसे ही बात होगी क्योंकि सवाल आएंगे, मुझे पता है। चलने से पहले हम नंबर बता दें, 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121051। टेक्निकल पढ़ाई को चुनिए। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने को राजेश को मौका दिया, तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: अंजला बहन,
4: हाँ हाँ,
3: अभी हम निगत सुनत रही है ई प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। समय चौपाल के संपन्न हो गिल, थोड़ा देर के बाद खेती गृहस्थी के बातचीत कीजिए। अंजला बहन,
4: हाँ हाँ,
3: खेती गृहस्थी में फिर एगो प्रायोजित कार्यक्रम हमने का सुने के, और ये कार्यक्रम बा उड़ान,
4: तो चला सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।
5: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ श्रोताओं, आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ 8826224477।
6: श्रोतो, हमारे भारत को युवा देश माना जाता है, हमें युवाओं को नशे से बचाकर युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करना है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में जिनमें अधिकतर युवा हैं, नशे की गिरफ्त में हैं। श्रोताओं, नशा एक अभिशाप है, यह एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है, साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुँचता है। जो कोई भी नशे के चंगुल में फंस गया वह स्वयं को बर्बाद होता ही है, इसके साथ ही उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति का सबसे बुरा प्रभाव अपनी पत्नी और बच्चों पर पड़ता है। भारत के कई इलाकों में नशा करके औरतों के साथ बदतमीजी से बोलना, उनके साथ मारपीट करना जैसे आम सी बात है। नशा करने के बाद व्यक्ति को उनके व्यवहार का भी कोई होश नहीं रहता, और नशा करने वाला व्यक्ति नशे का इतना आदि हो जाता है कि नशे का सेवन ही उसके लिए और उसके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को सही समय पर रोकना, नशे की लत से बाहर लाने के लिए मदद करना अत्यंत आवश्यक है। अगर सही व्यक्तियों, परिवार, दोस्तों का सहयोग मिले तो नशे की लत से छूटा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की।

0: और देखते हैं नशे का क्या प्रभाव है और नशा हमें किस हद तक बर्बादी तक पहुंचा सकता है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है मेरी लत। रमेश एक दिन अपने काम से घर लौट रहा था, तभी उसे उसका पुराना जिगरी मित्र दिनेश एक दारू के ठेके के पास दिखता है।
1: अरे दिनेश, तू यहाँ? अरे कैसा है तू?
2: अरे रमेश, तू इतने समय बाद? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है?
1: अरे यार, मैं भी अच्छा हूँ, पर तू यहाँ शराब की दुकान के बाहर क्या कर रहा है?
2: कुछ नहीं, यह सब छोड़, चल तू मेरे घर चल, बैठकर बात करेंगे।
1: अरे नहीं नहीं यार, इस समय तेरे घर मेरे घर से निकलवाएगा क्या?
2: मतलब?
1: अरे तेरी भाभी मुझे घर से निकाल ही देगी।
2: तेरी शादी कब हुई?
1: बस यार, अभी 2 साल पहले।
2: सही है, बताया भी नहीं।
1: अरे यार माफ करना, कोशिश तो की थी पर तेरा नंबर या कुछ पता नहीं मिला।
2: चल कोई बात नहीं, अभी तू घर चल, आज लेट घर चले जाना।
1: चलो ठीक है।
2: अरे दिया, दरवाजा खोलो।
3: हाँ अभी आई।
2: ये देखो मेरे साथ कौन आया है, पहचाना तुमने?
3: रमेश भैया है ना।
2: अरे वाह, तुम कैसे पहचानी?
3: एक तो आपकी खुशी से, दूसरा पहले की कुछ फोटो देखे हैं तो बस अंदाजा लगा लिया। अब अंदर भी आ जाओ।
2: दिया जरा चाय नाश्ता बना दो।
3: हाँ अभी लाती हूँ।
2: और बता भाई कैसा है तू, और क्या कर रहा है आजकल, और पत्नी बच्चे कैसे हैं?
1: बस यार सब बढ़िया है, अभी कुछ 7-8 महीने पहले ही यहाँ के किसी पास के अस्पताल में नौकरी लगी, तब से बस यही कर रहा हूँ। हमेशा दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ, लेकिन आज जब पहली बार यहाँ से निकला तो तुझे देखा और तू मिल गया।
2: हाँ यार, सच में मैं तुझे बहुत याद करता हूँ।
3: ये लीजिए, चाय नाश्ता तैयार है।
2: चाय पी ले, दिया चाय बहुत अच्छी बनाती है।
1: यार खुशबू तो अच्छी आ रही है। वाह वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाई है भाभी। पर भाई अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे।
2: अरे इतनी जल्दी जा रहा है, खाना भी तो खाकर जाता।
1: नहीं नहीं भाई, खाने के लिए फिर कभी आऊंगा, बस अभी चलता हूँ।
2: ठीक है भाई।
1: अच्छा वैसे एक बात बता, तू जहाँ हम मिले थे वहाँ क्या कर रहा था?
2: अरे अरे कुछ नहीं यार, इन बातों को छोड़ दो।
1: सच बता दिनेश मुझे, डॉक्टर हूँ, पीने वाले को पहचान ही लेता हूँ।
2: ठीक है, कल मिल सकता है वहीं पर?
1: हाँ ठीक है, कल मिलते हैं।
2: दिया लाइट बंद कर दो, मैं सोने जा रहा हूँ।
3: अरे आपने खाना तो खाया ही नहीं।
2: मन नहीं है, तुम खा लो।
3: क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या, मुझे बताइए।
2: ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला उतना करो, समझी?
3: जी।
1: हाँ रमेश अब बता क्या हुआ।
2: क्या बताऊँ यार, नौकरी सही नहीं चल रही है, एक नया बॉस आया है, हमेशा कुछ ना कुछ करके सबको नौकरी से निकाल रहा है, मुझे भी वार्निंग दी है, तो बस अपना गम दूर करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ।
1: चाहे तू कुछ भी क्यों ना कर, पर यार शराब पीना किसी बात का समाधान नहीं है, और तू ऐसा कैसे कर सकता है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
2: तो क्या करूँ यार?
1: अरे बस कर यार, उठ, और कितना पिएगा, अभी घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ।
2: दिया, ओ दिया दरवाजा खोलो।
3: आज आप फिर से पीकर आए हो?
2: फिर से चपड़ चपड़ करने लगी तू?
3: मैंने क्या किया, मैं सही तो बोल रही हूँ, शराब पीना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है।
2: चुप हो जा, ज्यादा मत बोल तू।
1: दिनेश, ओ दिनेश, अरे दरवाजा खोलो भाभी।
3: अरे रमेश भैया आप आइए आइए।
1: नमस्ते भाभी, ये मेरी पत्नी है रिया।
4: नमस्ते भाभी।
3: नमस्ते।
4: अरे भाभी ये आपके चेहरे पर क्या हो रहा है?
3: अरे अरे कुछ नहीं, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
1: भाभी दिनेश कहाँ है?
3: वो तो अभी सो रहे हैं।
1: भाभी आप यहाँ बैठिए, ये दिनेश आजकल जो भी कर रहा है आप मुझे बताइए।
3: पता नहीं भैया इनको क्या हो गया है आजकल, पहले तो ये बहुत सही थे पर आजकल रोज रात को लेट आते हैं, रोज शराब।

0: आते हैं, मैं कुछ समझाती हूँ तो मुझे मारते हैं। पर अब घर में भी किसी चीज का उनको कोई होश नहीं रहता है। वैसे ही तनख्वाह बहुत कम है और अब तो जितनी आती है वो सब शराब में खत्म हो जाती है।
1: अरे अरे भाभी, आप रोइए मत, शांत हो जाइए।
2: अरे अरे भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ दिनेश से, मैं समझाता हूँ उसे। दिनेश उठ उठ, तुझसे बात करनी है।
3: अरे भाई, तू सुबह सुबह

0: तो क्या करूं, घर आते ही शुरू हो जाती है, कुछ समझती नहीं है ये।
1: दिनेश, शराब न पीने की ही तो बात कहती है, और कुछ तो नहीं कहा ना, तो मैं भी तुझसे वही कहता हूँ, तो तू मुझे भी मारेगा?
0: भाई अभी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अच्छा लगता है शराब पीकर, मैं अपना गम भूल जाता हूँ। क्या गलत करता हूँ पीकर? पीकर आता हूँ, आकर सो जाता हूँ चुपचाप।
1: यही तो गलत है यार, जो भी बात है बता, मिलकर कुछ समाधान निकालेंगे। पर ये इस तरह से शराब पीना कोई समाधान नहीं है किसी चीज का।
0: भाई प्लीज, अभी मैं कुछ समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, बस अभी मुझे अकेला छोड़ दो।
1: ओह ठीक है यार, फिर हम चलते हैं।
2: अरे आप लोग चाय नाश्ता तो करके जाइए।
1: नहीं भाभी, फिर कभी। अपना और दिनेश का ध्यान रखिए, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए।
3: दिनेश भैया, शराब की वजह से आपने, आपकी पत्नी, आपका घर परिवार सब मुश्किल में है। सबसे ज्यादा तो आप खुद। आप समय लीजिए और सोचिए, और जल्दी से सही होकर हमें बुलाइए खाने पर।
0: जी भाभी जरूर।
1: ठीक है दिनेश, चलते हैं।
0: मेरी बेइज्जती करके खुशी मिल गई होगी तुमको, अब बस कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो।
4: दिनेश परेशानियों व दफ्तर के खराब माहौल की वजह से पीना शुरू कर देता है और शराब पीने का आदी हो जाता है। दिनेश को उसके दोस्त, उसकी पत्नी सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं समझता। शराब का सेवन और बढ़ता जा रहा है, उसका व्यवहार दिन ब दिन बदतर होने लगता है। अब आगे।
0: दिया, ओ दिया।
2: बस भी कीजिए आप, और कितनी शराब पियेंगे, आपकी हालत खराब होती जा रही है।
3: हेलो भाभी।
2: हेलो
3: भाभी, आप रो रही हैं? सब ठीक तो है ना?
2: रिया, इन्होंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया है, कुछ खाते पीते भी नहीं है सही से। अब तो इनको उल्टियाँ होने लगी हैं, और ये बस दिन भर शराब पीते रहते हैं।
3: ओहो भाभी, मैं रमेश को कहती हूँ, वो जरूर कुछ करेंगे।
2: प्लीज रिया, एक बार जरूर बोलिए रमेश भैया को।
3: हाँ हाँ भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ, रुकिए।
2: थैंक यू रिया।
0: दिया, ओ दिया।
2: अरे ये क्या हो गया, खून? अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, रमेश भैया को कॉल करती हूँ, वो डॉक्टर है, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो रमेश भैया।
1: हेलो। हाँ भाभी। भाभी क्या हुआ, आप इतनी घबराई क्यों है? सब ठीक तो है ना?
2: नहीं भैया, दिनेश लगातार शराब पी रहे थे कुछ दिन से, और उन्हें उल्टियाँ हो रही थी। आज तो उनको खून की उल्टी हो गई है और वो बेहोश हो गए हैं।
1: अरे भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ।
2: भैया दिनेश ठीक तो है ना?
1: हाँ भाभी, अभी तो वो ठीक हो गया है। ज्यादा शराब पीने की वजह से बस लीवर में थोड़ी सूजन हो गई थी, पर उसे दवाइयाँ और ड्रिप चढ़ा दी है, थोड़ी देर में उसे अब होश भी आ जाएगा।
2: थैंक यू सो मच भैया।
1: नहीं नहीं भाभी, थैंक यू मत कहिए, इसकी जरूरत नहीं है।
0: दिया, ओ दिया, ये मैं कहाँ हूँ?
1: अस्पताल में।
0: अरे रमेश तू?
1: हाँ मैं। देख दिनेश, डॉक्टर हूँ मैं, इसीलिए मरीज का इलाज करना मेरा फर्ज है, इसके सिवा मैं तुझे नहीं जानता।
0: तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार?
1: ऐसे नहीं तो कैसे बोलूं? दोस्त तो है नहीं तू मेरा, अगर दोस्त होता तो एक दोस्त की बात मान लेता। कितना समझाया तुझे, शराब मत पी, ये सिर्फ बर्बादी का रास्ता है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आया।
3: और तू और शराब की लत में ऐसे फिर गए, अपने अपने आप को भाभी का भी ध्यान नहीं रखा, क्या हालत हो गई देखो उनकी। और आपने उन पे हाथ भी उठाया? अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, उसके साथ मारपीट करना, ये तो सबसे ज्यादा बुरी बात है भैया।
0: दिया कहाँ है? दिया प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करूँगा।
1: नहीं दिनेश, हम सब तुझसे गुस्सा हैं।
3: हाँ, और अब तो हम भाभी को भी लेकर जा रहे हैं, आप जितना मर्जी चाहे शराब पी लो।
1: हाँ यार, अब तो मैंने तेरे लिए 3-4 कार्टून और मंगवा लिए हैं।
0: अब से मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो दिया।
2: थैंक यू सो मच रमेश भैया और रिया भाभी, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की, और दिनेश बहुत लकी है कि उनको आपके जैसे समझदार और अच्छे दोस्त मिले हैं।
1: अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, ये तो मेरा फर्ज था।

0: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना आज की कहानी में किस प्रकार तनाव में आकर दिनेश ने शराब पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वह शराब का आदि हो गया और इसी लत की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा।
1: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
2: हमारा फोन नंबर है
1: 8826224477। जी हाँ, 8826224477। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

0: तो उदय भाई अभी हम सब सुनते लिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, और अब बात खेती किसानी के और किसान भाइयों के फायदे लगी, और खास ओकरा साथ साथ अपना भी
1: किसाने भाई के फायदा खाती ना,
0: हम यो लगी।
1: अब तो कहीं की पूरे मानवता के फायदा खाती।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कहल जाए कि हम कहो कहावत है कि जैसन आहार वैसन विचार
1: जैसन अन्न वैसने मन,
0: मन, तो
1: और वही पर
0: अन्न
1: तन।
0: वही पे तन, और तन के बाद हूँ बहुत सारा चीज है, तो अभी हम ऊपर आगे ना जेबे। तो भाई ऐसन मन और तन लगी ऐसन उपज भी होवे के चाहिए कि ओकर असर स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बढ़िया पड़े, और जे बातचीत करती है वो हम जैविक खेती के बारे में बातचीत कर लिए हैं कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की देखरेख आज के समय की मांग है। जिस तरीके से जीवन हम सब जी रह लिए है, और जितना रासायनिक खाद के बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ रहे, बहुत तरह के बीमारी से ग्रसित हो रहे लोग, तो ऐसे में ये मांग है कि जैविक खेती करे के। तो ये खेती जो है कि गोबर के खाद, केंचुआ के खाद, हरा हरा खाद और कीटनाशक और खर पतवार नाशक एकरा में उपयोग बिल्कुल न करल जा है, और जो बाजार में मिले वाला सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के जगह नीम के तेल, गोमूत्र और दसपर्णी काढ़ा के एकरा में इस्तेमाल करल जा है।
1: बात तो ठीक कहनी। देखिए, जैविक खेती मूल रूप से उ खेती है, एक टिकाऊ कृषि प्रणाली को अगर वह कह सकीले, जे परिस्थिति पर आधारित, पारिस्थितिकी से जोन चीज उत्पन्न होला ओकरा आधार पर कीट नियंत्रण के साथे साथे पशु और पौधा के जे अपशिष्ट बा ओकरा से प्राप्त जैविक उर्वरक आ नेत्रजन स्थिरीकरण में उपयोग में आवेला। कहे के मतलब ई साफ साफ भइल कि रासायनिक जे खाद बा ओकरा से अलग,
0: अलग।
1: जे पशुधन से, जे गाछ वृक्ष से जे हमनी का भेटाला ओकरा से जे हमनी का खाद बनाई ले और ओकरा के उपयोग करी ले, तो ई ऊ जे बा जैविक जे बा ऊ खेती इहे है।
0: बिल्कुल
1: वही खाद
0: बिल्कुल।
1: से जो उत्पादित एकर सबसे जो दो तीन गो फायदा बा, सबसे बड़ फायदा तो ई बा कि स्वास्थ्य के नुकसान ना पहुंचे। अब बड़ बड़ देश में जो
0: हाँ
1: सामान्य उत्पाद बा रासायनिक उर्वरक से और जो जैविक उत्पाद बा, दोनों के जे बाजार में दर बा वो अलग अलग बा।
0: अलग अलग है।
1: हाँ, काहे कि उस स्वास्थ्य खातिर फायदेमंद बा।
0: हाँ
1: जे भी रासायनिक उत्पाद बा ओकर तरह तरह से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा बा। यहाँ तक कि लोग जे बा गैस और दूसर तरह के बीमारी के भी शिकार हो रहा बड़े। कुछ लोग तो जे आंतरिक मेटाबॉलिज्म जब प्रभावित होता तो कैंसरस भी हो रहा बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो यह से ई बहुत आवश्यक बा कि हमने का अब जैविक खेती के तरफ चल जाओ।
0: हालांकि लोग कई बार ये भी सुनने लग मिले कि रासायनिक खाद से उत्पादन ज्यादा हो जाए। हाँ, उत्पादन हो सके है ज्यादा, लेकिन ओकर बाजार में कीमत उतना ना है जितना कि जैविक खेती से उत्पादित वस्तु के कीमत मिला है।
1: देखिए, उत्पादन
0: हाँ
1: तो ये बात सही बा कि हमने के यहाँ हरित क्रांति भइल, हमने के मूल में ही रहे कि भाई वो बेरा हिंदुस्तान में इतना

0: हर आबादी के पेट भरल हमनी खातिर एक जिम्मेवारी रहे,
1: सही
0: एक
1: बात है।
0: उत्तरदायित्व तो रहे। लेकिन अब उत्पाद वैसन होखेनु कि जे हमनी खातिर, हमनी के शरीर खातिर फायदेमंद होके। कई बार जब रुआ 10 कदम चली ले तो लगेला कि ना एकरा से हे रास्ता से ना हो
1: वो
0: रास्ता से
1: रास्ता
0: चल।
1: से हाँ।
0: आज जहाँ हमनी पहुँचल बनी, उत्पादन तो हमनी का जरूर बढ़ा ले ले बनी, लेकिन ओकरा साथे स्वास्थ्य के ध्यान में रखत। अब जैविक उत्पाद के मांग भी बढ़ल बा और शरीर खातिर ही बनी
1: बिल्कुल
0: अनिवार्य भई जा
1: बिल्कुल।
0: रहल बा।
1: और साथ ही साथ पर्यावरण से लेकर के खेत के मट्टी तक भी ये बहुत लाभदायक है जैविक खेती। और एकर जो क्षमता है ये उर्वर जल जल धारण करे के क्षमता खेत में ज़्यादा बढ़ जाए और मट्टी के भी लंबा समय तक उपजाऊ बनल रहे। तो बहुत तरह के फायदा है जैविक खेती करे से, आम लोग के भी, किसान भाई के भी और पर्यावरण लगी भी। तो काहे ना जैविक खेती के
0: निश्चित
1: तरफ
0: तो अब देखिए,
1: हम।
0: अब चरणबद्ध रूप से कुड़े के शुरू करे के चाहिए। चेक कहे कि अभी तक हमनी का बड़ पैमाना पर रासायनिक उर्वरक के प्रयोग केनी है, जेकरा के धीरे धीरे घटावल जा सकेला। मिट्टी के जांच करवाई और ओकरा बाद धीरे धीरे रासायनिक उर्वरक के प्रयोग बंद करी, बर्मी कंपोस्ट, हरा खाद और जीवामृत वगैरह के प्रयोग करके
1: बिल्कुल
0: खेती में अपन उत्पादन करी।
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे जब मिट्टी स्थिरीकरण की दिशा में चल जाए तो फिर हमनी का ओकर आवश्यकता कम होखे लगी। तो आवश्यकता बाई करे के अपनावे के। और अब चले के एगो गीत सुनल जाओ, कलाकार बनी हवलदार बलराम लाल।
1: चलो सुने ही गीत।

0: अभी हम
1: अंजलि
0: सब
1: बहन।
0: लोकगीत सुनी और लोकगीत हली जतसार,
1: हाँ
0: तो हवलदार बलराम लाल इतना बढ़िया बढ़िया गीत सुनेलथिन और इनका धन्यवाद जरूर मिले के चाहिए।
1: हाँ
0: और अब समय संपन्न होते हैं तो हम सब फिर मिलवे अपने सबसे भी, तो तब तक लगी उदय भाई बहुत बहुत नमस्कार अपने के।
1: नमस्ते।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुले

0: बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहा बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बन रहा है वातावरण, प्रवासियों से प्रदेश की समृद्धि में योगदान की अपील की। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय गांवों में गरिमा उत्सव की शुरुआत, सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश ने शुरू किया भोजपुरी बुलेटिन, प्रत्येक दिन शाम 6:05 पर होगा प्रसारण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक संरचना का विकास हो रहा है और अब लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पटना के गांधी मैदान में अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों के लिए वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं
1: और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब एक साल का कार्यकाल एनडीए सरकार 20 नवंबर 2026 को पूरा करे तो लगभग 5,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर इन्वेस्ट कराने का काम की शुरुआत करने का काम किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने प्रवासी बिहारवासियों से बिहार लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन की सरकार है।
1: बिहार के लोग जो बाहर में हैं, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है, अब बिहार लौटने का समय है। बिहार लौट कर आइए और बिहार, क्योंकि जन्मभूमि, इस जन्मभूमि को समृद्ध बनाना है और ये तभी बन पाएगा जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौट कर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर देंगे।
0: प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित की जाएगी। जन शिकायत संबंधी आवेदन देने की प्रक्रिया शिविर के 30 दिन पहले शुरू करने की व्यवस्था की गई है। वहीं शिविर के दिन भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने कल से आयोजित होने वाले सहयोग शिविर को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखकर शिविर के प्रथम दिन सहभागिता देने का अनुरोध किया है। प्रभारी मंत्री और सचिव कम से कम 3 प्रखंडों के सहयोग शिविरों में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सचेत किया। उन्होंने कहा कि निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट समय अवधि के भीतर नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
1: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे।

0: क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे। तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
1: भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी और एनडीए की रणनीति तथा कोर समिति के विस्तार पर विचार किया गया। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में आज से प्रदेश भर में जनजातीय गरिमा उत्सव की शुरुआत हो गई है। जन भागीदारी राष्ट्रव्यापी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत विभिन्न जिलों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत 25 मई तक विभिन्न चयनित प्रखंडों में शिविर लगाकर जनजातीय समुदाय के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाता जैसी योजनाओं से वंचित परिवारों को चिन्हित कर सहायता दी जाएगी। इस कड़ी में रोहतास जिले के 5 प्रखंडों के 19 गांवों में शिविर की आज से शुरुआत हुई। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने उत्सव का उद्घाटन किया।
3: पहले दिन हम लोग के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और फिर 19 तारीख से 25 तारीख में हम लोग डोर टू डोर विजिट करेंगे जनजातीय बहुल्य गांव में, और हर एक घर में जो भी सरकार की योजनाओं से जो भी वंचित हैं या बैंक अकाउंट उनका नहीं है तो वो सैचुरेशन मोड में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हम लोग का 18 से लेकर 25 तक ये चलेगा। जो जनजातीय बहुल्य गांव है उनके हर एक घर में हम लोग के कर्मी जाएंगे और हर प्रकार का जो सरकारी सहायता मिल रहा है, सरकारी योजना चल रही, हर योजना का लाभ हर परिवार को मिले, यही हमारा उद्देश्य है।
2: सिवान जिले के आंदर प्रखंड के 31 जनजातीय टोलों में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत घर घर जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। वहीं मुंगेर के हवेली खड़गपुर, बरियारपुर और धरहरा प्रखंड के 20 चयनित गांवों में विशेष शिविर के माध्यम से पात्र लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अन्य जिलों में भी इस उत्सव की शुरुआत हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं निधिश्री।
1: केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जनजातीय गरिमा महोत्सव के तहत जन भागीदारी अभियान से आदिवासियों को काफी लाभ होगा। श्री मांझी ने गया के समाहरणालय सभागार में अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय समूहों के चयनित लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना और वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा प्रदान किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
5: इधर आइए। इधर
6: इधर
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी गतिरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि मुश्किलों के बावजूद देश में सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार हमारे पास मौजूद है।
8: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से

0: जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड और बाकी नेचुरल गैस एलपीजी के प्राइसेस में बहुत उछाल देखा जा रहा है, और इस सब के चलते हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड एलपीजी और नेचुरल गैस का वो भी अफेक्ट हुआ है। परंतु हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशियंट क्रूड इन्वेंट्रीज है। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशियंट स्टॉक्स हैं।
1: एनटीपीसी की बाढ़ इकाई सौर ऊर्जा आधारित नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख सत्य रामकृष्ण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इसके तहत उपभोक्ताओं को 4 मेगावाट तक सोलर एनर्जी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बिजली को बैटरी में संग्रहित किया जाएगा और जरूरत के अनुसार उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर दिया गया है। आकाशवाणी के पटना केंद्र समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से आज शाम 6:05 पर प्रथम भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री कुमार ने आंचलिक भाषा में समाचार प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।
2: बहुत दिन से मांग चलत रहा कि भोजपुरी भाषा में बुलेटिन शुरुआत हो, जौना के शुरुआत आज भइल बा। ऐसे कि जन जन तक ये बात पहुंची आ भोजपुरी बहुत लोग बोलेला, बिहार के साथ साथ विदेश में भी लोग बोलेला। ये जो काम भइल बा ये बड़ा बधाई के पात्र बा। भारत सरकार के हम बधाई देत बानी, बिहार सरकार के बधाई देत बानी, आ ये आकाशवाणी के जितना भी अधिकारी लोग बा सब लोग के जो सोच बा और अगर सैल्यूट कर देने कि इतना अच्छा काम के अच्छा से हम सुननी भी है। जन आज प्रसारण भइल ह 5 मिनट के, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस अवसर पर आकाशवाणी पटना के केंद्राध्यक्ष एचडी सिडाम, उप निदेशक सह समाचार प्रमुख अजय कुमार, समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक और निधि श्री समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा यह प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज अंडरस्कोर पटना पर भी उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण किया जा रहा है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, भभुआ और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 19 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा और अधिकतम तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। श्री मान ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में मत्था टेका और देश प्रदेश में सुख शांति की प्रार्थना की। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। पटना स्थित नियोजन भवन में कल पूर्वाहन 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास के तत्वावधान में आयोजित मेले में 12वीं पास 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने योग्य अभ्यर्थियों से मेले में शामिल होकर लाभ उठाने की अपील की है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत लोदीपुर गांव में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की एक दर्जन से अधिक छात्राओं की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि गर्मी के कारण छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन पहले भी जिले के एक स्कूल में प्रार्थना सत्र के दौरान 27 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी। केंद्रीय खनन एवं कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद दुबे ने आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाने वाली नई मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बन रहा है वातावरण। प्रवासियों से प्रदेश की समृद्धि में योगदान की अपील की। आम लोगों की समस्या

0: के त्वरित निष्पादन के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय गांवों में गरिमा उत्सव की शुरुआत, सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश ने शुरू किया भोजपुरी बुलेटिन, प्रत्येक दिन शाम 6:05 पर होगा प्रसारण। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021।
0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
7: पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस विशाल समारोह में 30 से अधिक मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा जदयू प्रमुख नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भी उपस्थिति देखने को मिली। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 19 मई से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायतवार सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों की 40 पंचायतों में ये शिविर आयोजित होंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
8: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
7: जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिले में मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य तेजी से जारी है। यह अभियान 2 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। जिलाधिकारी ने सभी वरीय नोडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के साथ नियमित समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया है। खराब प्रदर्शन करने वाले चार्ज अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कार्य में तत्काल सुधार लाने को कहा गया है। एम्स पटना के द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को डिग्री एवं मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि एम्स जैसे सम्मानजनक संस्थान से पास होकर स्वास्थ्य क्षेत्र में समाज सेवा

0: करना ही सबसे बड़ी करियर ग्रोथ मानी जाती है।
1: एक तो होता है कि अपने प्रोफेशन में बढ़ोतरी करना, करियर ग्रोथ करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस रिसर्च करें आप, एनालिसिस करें आप, बहुत कॉम्पिटेंस पाए, बट एज बिफोर जो इंपॉर्टेंस होती है समाज को वापस देना। नॉलेज, ज्ञान प्राप्त इंसान करता है टू गिव बैक टू सोसाइटी। जहां पर भी आपको वो चांस मिले उसको वापस देने का, उसको उससे मुकरिएगा मत।
0: पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार में एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री के द्वितीय चरण का शुभारंभ कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान जिले के सभी अंचल के किसानों के लिए फार्मर आईडी निर्माण की शुरुआत भी की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत यह पहल किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपराध नियंत्रण को लेकर पटना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बेटा थाना क्षेत्र में एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ में दो वांछित अपराधी घायल हो गए, जबकि एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने एक पूर्व हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
2: जब इनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि ये एक बड़ी घटना वर्चक में करने जा रहे हैं, इसके लिए ये हथियार यहाँ पर बेटा थाना क्षेत्र के एरिया में रखे हुए हैं। हथियार की रिकवरी के लिए जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे दोनों के द्वारा अवधेश साहू उर्फ विदेशिया और पप्पू राय, इनके द्वारा फायरिंग किया गया पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया और आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग करते हुए इनको रिलीज किया गया, जिसमें इन दोनों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के तुरंत बाद इन लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहाँ ये उपचाररत है। जो तीसरा व्यक्ति है दीपक कुमार, उसे सरेंडर किया है और इन तीनों को अभी वहाँ पे इलाज करा के फिर आगे कार्रवाई की।
0: जिले में हाल के दिनों में हुई तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का असर जनजीवन और कारोबार पर भी पड़ा है। बिजली बाधित रहने, जल जमाव और ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापार प्रभावित हुआ। ग्रामीण इलाकों में भी मौसम की मार देखने को मिली है। आम और मौसमी सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है। इसे देखते हुए उद्यान और कृषि विभाग ने सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को सर्वे कर वास्तविक क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है।
3: अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
4: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए तनु गांगली के स्वर में गीत।

0: अभी आप तनु गांगुली के स्वर में गीत सुन रहे थे। इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं

0: बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म खानदान का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। नक्काश लयापुरी की रचना है, संगीत दिया है खयाम ने।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अब आइए किशोर कुमार को सुनते हैं फिल्म कलाकार में। इंदिवर की रचना है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

गोरा और काला इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जीवन मृत्यु, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब आइए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं फिल्म यादों की बारात में। मजरूह की रचना है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म कभी कभी का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। साहिर की रचना है, संगीत दिया है खयाम ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए रामविलास यादव के स्वर में भजन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32

0: 20वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट होंगे। यह यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से

0: काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9.

0: ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमेरिका के एक सनती वफद से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं और गर्मी की इंतहाई शिद्दत के दौरान आयुष की वजारत ने गर्मी से मुतालिक बीमारियों की रोकथाम की गरज से एडवाइजरी जारी की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के अव्वलीन दौरे के नुमाया नतीजे सामने आए हैं, जिसमें दोनों मुल्कों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर सब्ज जामे शराकतदारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है। ओस्लो में अपने हम मनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ वफद की सतह की बातचीत के बाद आज एक मुश्तरका बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि दोनों लीडरों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को बेहतर करके उसे सब्ज जामे शराकतदारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है, जो कि साफ तवानाई, नीलगु मईशत, ग्रीन कायापलट के शोबों में तआवुन को बेहतर बनाने में एक अहम संग मील है।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने भारत EFTA तिजारती और इक्तसादी शराकतदारी के मुआहदे से हासिल होने वाले वसी मौके को भी वाजह किया है। इसमें शराकतदारी को हाईटेक, AI, स्टार्टअप्स के शोबों में मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने की गरज से तवानाई पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: इस बाहमी मीटिंग में सेहत से मुतालिक हाईटेक हल, डिजिटल सेहत, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के शोबों में बहुत से मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की खलाई एजेंसी के दरमियान एक मुफाहमत नामा दिफाई शोबे में ताल्लुकात बेहतर बनाने को यकीनी बनाएगा। तआवुन के एक सहरुखी समझौते पर भी आज दस्तखत किए गए। इसमें भारत और नॉर्वे भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करते हुए आलम जुनूब के मुमालिक को इंसानी तरक्की के हल मुश्तरक तौर पर फराहम करेंगे। नॉर्वे के वजीर आजम ने एक अहम बयान में टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की क्यादत को तस्लीम किया है। दोनों लीडरों ने जाब्तों पर मबनी आलमी निज़ाम में अपने मुश्तरक एतकाद और मुजाकरात और सिफारतकारी के अपने अहद का इरादा किया। करीबी ताल्लुकात के तई जज्बा खैर सगारी के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के इज्जत माब शाह हराल्ड दी फिफ्थ के जरिए रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रांड क्रॉस अवार्ड दिया गया। जनाब नरेंद्र मोदी स्वीडन का अपना दौरा पूरा करने के बाद आज सुबह नॉर्वे पहुंचे थे। वजीर आजम ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कहा कि बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाकर एक जामे शराकतदारी में तब्दील करना, मुश्तरक इख्तराई शराकतदारी 2.0 की शुरुआत करना और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनू जहानत के कॉरिडोर का आगाज करने समेत ये मुजाकरात इंतहाई बारावर रहे। बातचीत में बाहमी तजारत को आइंदा 5 साल में दुगना करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की अपनी हम मनसब मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर कल इटली के 2 रोजा दौरे पर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी वजीर आजम मेलोनी के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्गियो मेटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने की गरज से कारोबारी लीडरों से भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र

0: मोदी इस महीने की 19 से 20 तारीख को इटली के दौरे पर होंगे। उनका ये दौरा 5 मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में भारत की जामे शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करना है। वजीर आजम की इटली की वजीर आजम के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे, जिसमें समंदरी सिक्योरिटी और मुस्तहकम कनेक्टिविटी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इटली भारत को न सिर्फ यूरोप बल्कि बहिरे रूम के मुकम्मल खित्ते तक भी रसाई फराहम करता है। ये अम्र सप्लाई चेन और दिफाई शराकत दारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। उनका 5 मुल्कों का यह दौरा सफारतकारी से कहीं ज्यादा हैसियत रखता है। ये भारत के मुस्तकबिल के तवानाई रूट्स, मसनू जहानत की शराकत दारी, सेमी कंडक्टर की रसाई, दिफाई साजो सामान की तैयारी और आलमी मफादात को बेहतर बनाने से ताल्लुक रखता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस बरस $1 खरब और अगले 5 बरस में $2 खरब की मालियत के बरामदात का निशाना तय किया है। उन्होंने वादे किया कि ये आत्मनिर्भर भारत का हकीकी हॉलमार्क होगा। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव के वेबसाइट के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस बरस आलमी चैलेंजों के बावजूद बरामदात $863 अरब तक पहुंच गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 5% ज्यादा है। जनाब गोयल ने जोर देकर कहा कि आगे पेशरफ के लिए इस जोश व खरोश में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए और हर एक को बिला तकान काम जारी रखना चाहिए।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: अमेरिका के आला सतह के एक सनती वफद ने नई दिल्ली में आज साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ तबादला ख्याल किया। भारत के न्यूक्लियाई सेक्टर में प्राइवेट सरमायाकारी और सनती शराकत दारी के लिए उभरते हुए मौके पर गौर व खौज किया गया। इस वफद में अमरीकी न्यूक्लियाई सनत के सीनियर नुमाइंदे, कारोबार से वाबस्ता तरफैन और सिविल न्यूक्लियाई तवानाई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत अमरीका तआवुन के साथ वाबस्ता अहलकार शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका फिलवक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, साफ तवानाई और उभरते हुए शोबों में एक मजबूत और मुस्तकबिल की जानेब गामजन शराकत दारी के सिलसिले में एक दूसरे से वाबस्ता हैं। विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत के तवील मुद्दती साफ तवानाई के अहदाफ का हवाला देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक न्यूक्लियाई बिजली की अपनी सलाहियत को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का इरादा रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम और जनूबी कोरिया के 2 मुल्कों के दौरे पर आज सुपहर वियतनाम के शहर हनोई पहुंच गए हैं। वियतनाम में वजीर दिफा अपने हम मनसब जनरल फॉन वॉन ग्यांग के साथ बाहमी मुजाकरात करेंगे। जनाब सिंह का यह दौरा वियतनाम के साबिक सदर हू ची मिन के कल 136वें यौम पैदाइश के मौके पर हो रहा है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल सरकार ने मुबैना इदारा जाती बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ जुल्म व ज्यादती की तहकीकात करने की गरज से 2 तहकीकाती कमीशन तश्कील दिए हैं। ये कमीशन भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक बनाए गए हैं। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीना की मंजूरी के बाद आज इस फैसले का ऐलान किया। इदारा जाती बदउनवानी की तफ्तीश करने वाले कमीशन की सरबराही कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बिस्वजीत बसु करेंगे। दूसरे कमीशन ममता बनर्जी की क्यादत वाली साबिका सरकार के दौरान ख्वातीन के खिलाफ जुल्म व ज्यादती की तहकीकात करेगा। इसकी सरबराही कलकत्ता हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज संपति चैटर्जी करेंगी। मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि दोनों कमीशन अगले महीने की पहली तारीख से काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि तहकीकात में बदउनवानी के माजी के मामलात और ख्वातीन के खिलाफ जराइम का अहाता किया जाएगा और अवाम में से लोग इन कमीशनों के सामने अपनी शहादतें पेश कर सकेंगे। बदउनवानी की इंक्वायरी में तमाम सरकारी महकमों का मुआयना किया जाएगा, जिनमें पंचायतें और जिला परिषद शामिल हैं। آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना

0: में पूछे जा रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़े जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गानेरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि उसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक

0: के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
0: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहाँ पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
2: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
2: सॉरी जी,
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
2: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
0: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता है तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट को, जो पोर्टल दिया हुआ है se.census.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जनगणना अधिनियम के सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी, अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका

0: काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
2: जी नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते। प्रणाम।
2: मैम मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हैं उत्तर प्रदेश राज्य के और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है मैम, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश जी बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर QR कोड होगा, QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या

0: वो भी जनगणना में आता है, उनको क्या जनगणना करवानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता। तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है, ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पर रह रहे हैं।
2: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ज्वालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
2: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
1: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी जो हम जनगणना हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
1: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
2: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
1: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं। तो इसमें कोई भी हो, अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
2: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
2: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: नमस्ते मैम।
2: जी नमस्कार।
5: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
1: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे कि अगर स्वगणना आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह स्वीकृत से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
1: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है, जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, तीन चार दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोज़ दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
2: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जे जे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?

0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं,
1: जी
0: उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी
0: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे,
1: जी
0: तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-04-81 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रिशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनकी उनको अपनी भाषा में समझाना,
1: जी
0: उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का, कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है।
1: जी
0: जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए, तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे,
1: जी
0: लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है,
1: जी
0: तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए,
1: जी
0: और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान, एक तो गांव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी, और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ अनुषा, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये
0: बिल्कुल
1: सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें
1: जी
0: मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है, तो इससे

0: कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी, और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
2: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अभी कॉल लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
3: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन कंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करे इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे आशीष कुमार चटर्जी का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण।

पहली रचना झप ताल में निबद्ध है, जबकि दूसरी रचना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर इनकी संगति की है तालंजय ठाकुर ने।

0: अभी आप आशीष कुमार चटर्जी का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। तबले पर इनकी संगति की थी तालांजय ठाकुर ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म खानदान का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। रविंद्र राजेंद्र कृष्ण की रचना है, संगीत दिया है रवि ने।

सरस्वती चंद्र। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंदिवर की रचना है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

रचना इंदिवर की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, आवाजें दी हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

भीगी पलकें, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। एम जी हसमत की रचना है, संगीत दिया है जुगल किशोर तिलकराज ने।

पिघलता आसमान। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ों में। माया गोविंद के बोलों को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म स्वीकार किया मैंने का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, निदा फाजली की रचना है, संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूत

0: मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।